0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल सुरक्षा के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ सुनिए प्रोग्राम गांधी चर्चा। इस प्रोग्राम च तुसी महात्मा गांधी जी के प्रेरक प्रसंग सुनते हो।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत

दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झड़ते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सजी है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्ज्वल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

मानसकान प्रोग्राम च तुसी रामचरित मानस दे लड़ीवार पाठ दी 109वीं कड़ी सरवण कर रहे सी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। परिचय परिचय तहत सुनो साढ़े अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामों का वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा। सवेरे 7:02 ते तुसीं साडा मॉर्निंग शो सोहनी सवेर सुनोगे। पंजाबी फिल्मां चों तुहानूं गीत सुणावांगे। सवेरे 8:40 ते प्रोग्राम होएगा मैक पंजाब दी। सवेरे 9:02 ते NDA सरकार दे 12 साल पूरे होण ते एक विशेष प्रोग्राम तुहाडी सेवा च पेश करांगे, PM किसान सम्मान निधि योजना। गजलां तुसी सवेरे 9:30 सुनोगे। सवेरे 10:02 ते सुनो लाइफ ऑन इनफरमाइशी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम हैलो फरमाइश। इस प्रोग्राम च तुसी फोन करके अपनी पसंद दे फिल्मी गीत सुनते हो।

लता मंगेशकर ते उषा मंगेशकर की आवाज च तुसी शिकारी फिल्म दे इस गीत दा मजा लै रहे सी। वेखो जी, सियाणे कहिंदे ने कि जिंदगी दा मजा तुसी उदों लैंदे हो जदों इस पल विच हाजिर हुंदे हो। हुण देखो ना, जे इन्ना सुरीला गीत सुनन की बजाए तुसी अतीत दीआं कुड़त्तना चेते करके झुरी जाओ जां फिर आउण वाले कल की असुरक्षा नूं लैके डरी जाओ तो फिर तुसी इस गीत नूं मिस कर दिता, जिंदगी नूं जीउणा मिस कर दिता। अज विच इस पल विच जीउणा ही जिंदगी है। तुहानू दसां जी, जिंदगी भोले की भी बड़ी दिलचस्प है। एक दिन भोला मैनू कह रहा है कि यार जो मैं छोटा हुंदा सी ना तो यह सोचता हुंदा सी कि जो मैं वड्डा हो जाऊंगा तो गरीबों की मदद करया करूंगा। वड्डे होके पता लगा कि मैं तो आप गरीब। सो जी, भोले की इस छोटी जी दिलचस्प गल तो बाद असी हुण थोड़ी जी दिलचस्पी अज के दिन के इतिहास में दिखाईए। अज के दिन के इतिहास का पन्ना पढ़ लें जी। अज दे दिन दा इतिहास यह कहिंदा है कि साल 1966 अज दे ही दिन बाल ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र विच मराठी मानस दे हक्कां लई शिवसेना पार्टी की स्थापना की गई सी। साल 1981 विच अज दे ही दिन भारत ने पहला 3 धुरी स्थिर प्रयोगात्मक संचार सैटेलाइट एप्पल सफलतापूर्वक लॉन्च करके पुलाड़ विज्ञान विच वड्डी मल मारी सी। अज दे ही दिन साल 1961 विच कुवैत ने ब्रिटेन दे शासन तो पूरी तरह आजाद होने का ऐलान कर दिता सी।

0: इस उद्यम की लोग बहुत इज्जत कर रहे हैं।
1: हुण 1076 हैल्पलाइन डायल करके सरकारी सेवावां की सुविधा घर बैठे बैठे ही लोग लै रहे हैं।
0: इस सेवा ने लोगों की खज्जल खराबी घटाई है। आंकड़े दस रहे हैं कि हुण तक 418,000 अपॉइंटमेंट बुक कीतियां गई ने, ते इन्हां चों बहुतियां अपॉइंटमेंट्स ते शिकायतों का निपटारा कर दिता गया।
1: हुण वेखो जी, जदों सरकारी कर्मचारी घर आ के लोड़ींदे कागज़ आप लैके जांदे ने,
0: इहदे नाल बजुर्गों नूं दिव्यांगजनों नूं बहुत राहत मिलती है।
1: 473 तरह दियां सरकारी सेवा दी सुविधा सिर्फ 1076 हैल्पलाइन नंबर डायल करके घर बैठे बैठे लई जा सकती है।
0: सरकार दी सेवा लोगों नूं सुकून दे रही है।
1: यह भी गल सची है जी कि जदों कोई इंसान निष्काम सेवा करता है ना, अपने दुख दर्द भुला के अपना ना वेखदियां दूजियां दे हंझू पूजन दा यतन करता है, दूजियां दी जिंदगी च मुस्कुराहट लियाण दी कोशिश करता है, तां फिर इदां दी निष्काम सेवा अगे वी साडा सिर चुकदा।
0: हिमाचल प्रदेश दे सोलन इलाके दे एक परिवार ने इदां दी निष्काम सेवा करके मिसाल पैदा कीती है।
1: उन्हां दा ना जी 26 साल दा नौजवान बेटा योगेश कुमार एक सड़क हादसे विच बुरी तरह जख्मी हो गया। हॉस्पिटल विच डॉक्टर्स ने कहा कि इहदा तां ब्रेन डेड हो चुका, मौत दे कंढे ते है। इस परिवार ने इन्हां हालात विच वी बेटे दा दुख भुला के बेटे दे अंगदान करन दा फैसला कीता, ते उन्हां दे इस फैसले नाल 3 लोगों नूं नवां जीवन मिलिया।
0: सो जी, निष्काम सेवा दे इस जज्बे नूं असीं सलाम करते हैं। सोनी स्वीर प्रोग्राम आकाशवाणी जलंधर तों प्रसारित किया जा रहा है।

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून, ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए

0: से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
3: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
4: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैनी से साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
5: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय

0: मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस

0: प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलपूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुरी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहे।

0: खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में हैं जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: मिस्टर मोदी फर्दर सेड द कंट्री इज इन्वेस्टिंग अक्रॉस सेक्टर्स दैट विल ड्राइव ग्रोथ, इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर जनरेशंस टू कम। Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said, he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
3: 12 saal ke

0: Areas. U.S. Central Command has said that all enforcement operations have been halted in line with President Donald Trump's directive. And in hockey, India defeated Uruguay 3-2, registering their third consecutive win in the FIH Women's Nations Cup in New Zealand yesterday. With this victory, India stormed into the semi-finals by finishing on top of Pool A. India will now face Chile in the semis tomorrow. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Sunil. The signing of the peace accord between the US and Iran finds front page coverage in dailies today. Trump Pezeshkian signed preliminary peace accord, headlines the Statesman, while the Indian Express headline reads, deal ending war gives Iran critical economic lifeline. The Times of India leads with the headline, Versailles the second, Trump rushes where historians would dread to tread. In Paris, Prime Minister Modi has asserted that AI, that is artificial intelligence, means all-inclusive for us and dubbed India a tech hub, writes the Asian Age. And finally, the Indian Express reports that a massive 1,200-year-old oak tree in Sherwood Forest in Nottinghamshire, England, which is said to have once sheltered Robin Hood, has died. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approve large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार ये आकाशवाणी है खबरों दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव पहला खास खबरां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी अनिश्चितताओं ते रुकावटों दरमियान भारत दुनिया लिए एक भरोसेमंद ते स्थाई भाईवाल वजों उभरिया है श्री मोदी अज नवी दिल्ली प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तहत 2,400 करोड़ रुपए की राशि वंडणगे पंजाब में यह प्रोग्राम 6 थावां ते कराया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतरराष्ट्रीय सिकल सैल दिवस के मौके पर आयोजित एक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे अमरीका ने ईरान नाल हुए समझौते तो बाद ईरानी बंदरगाह में समुद्री जहाजों की आवाजाही से लगी समुद्री नाकाबंदी हटा ली है ते भारतीय फौज की सिख रेजिमेंट ने अग्निवीरां नूं सिख्या ते हुनर विकास राही समर्थ बनाउण लई अमृतसर स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नाल एक समझौते ते दस्तखत कीते ने हुण खबरां विस्थार नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया लिए एक भरोसेमंद भाईवाल वजों उभर रहा है बीती रात पैरिस विच भारतीय भाईचारे नूं संबोधन करदिआं श्री मोदी ने कहा कि एक समां सी जदों देशां विचकार संबंध सिर्फ व्यापार ते आधारित हुंदे सन पर अज विश्वास भी उन्ना ही महत्वपूर्ण हो गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक भरोसेयोग सप्लाई लड़ी है ते एक स्थिर भाईवाली चाहुंदा है
3: हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है
2: श्री मोदी ने कहा कि देश उन सारे क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास नवीनता ते मौके प्रदान करेंगे उन्होंने कहा कि भारत की यात्रा में एक फैसला कुन पड़ा है जिथे इच्छावान नवीं उचाइया ते पहुंच रही ने श्री मोदी ने कहा कि एवियन में G7 मीटिंग में उन्होंने विश्वास से आधारित भाईवाली की अहमियत से जोर दिता है प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 सम्मेलन में भारत का स्पष्ट संदेश सी कि आलमी शासन उदों ही प्रभावशाली होगा जदों ये समावेशी होगा उन्होंने कहा कि विश्व विकास उदों ही स्थिर होगा जदों ये साझा किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इन चुनौतीपूर्ण समयों में फ्रांस और भारत विचकार भाईवाली विश्वास स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत थंब बन गई है उन्होंने कहा कि दोनों धिरों ने अपने संबंधों को एक विशेष

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से आकाशवाणी का ए जलंधर केंद्र है। आओ गजलां सुनिए। पहला सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ च ये गजल।

0: वो चलता है जी 5 बजे तो लेके 6:30 बजे तक।
1: 8 बजे तक चलाया करो, 6:30 तो अगे ना 8 बजे तक चलता हों
0: अच्छा तुसी मिस करते हो प्रोग्राम है जी।
1: 8 बजे तक सौंदा रह जाए हूँ ना जल्दी खत्म हो जाता।
0: अच्छा चलो तुहाडा आपां सुझाव नोट कर लिया जी। फिलहाल तो नहीं कुछ किया जा सकता, फिलहाल तो तुहाडा गीत ही सुना सकते हैं आपां।
1: हाँ जी हाँ जी अपना आख मुलाजमान
0: ठीक है जी, जरूर कह देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दस बज के 34 मिनट हो गए ने जी। 11 बजे तक सुरीला सफर चलेगा फिल्मी गीतों का हैलो फरमाइश प्रोग्राम च, ते तुसी सुन सकोगे अपनी पसंद के फिल्मी गीत। साडा नंबर है 0181 23 42 173। हाँ जी, स्वागत है जी। हैलो, लो जी, लगता है कि नैटवर्क की कुछ गड़बड़ है जिस करके मैनू लगता है कि मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रहे, पर आपां इन्हां दी फरमाइश नोट कर ली सी जी। ये सुनना चाहते ने जुगनू फिल्म चों किशोर कुमार का गाया ये गीत, आपां इन्हां नू सुना रहे हैं।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का स्पष्ट संदेश था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
3: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू हुए इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ऑनरी हार के वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मणिपुर में खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों का व्यापक तलाश अभियान जारी है। इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने विभिन्न भूमिगत संगठनों के 10 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया और एक अपहृत व्यक्ति को सफलतापूर्वक रिहा किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है।

0: भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाज़ों के आवागमन पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली है। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी श्री राहुल गांधी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम व्यूप 347.6 मीटर या 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुन पेश है प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

सना समा हीना शकीला जैस्मीन राज्य सुल्ताना अख्तर अंसारी सूरज मोहम्मद जावेद अंसारी उन्हों का ये सानू मैसेज मिले है जी। इस तरह अगला मैसेज है जी रिंगनी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा ते करुणा वर्मा उन्हों का गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब तो गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शमी रजनी आकाशदी पनहत ते पोतरा गुरशबद होनी मैसेज कर रहे हैं। इस तरह बठिंडा रोड मंडी डब्बाली तो राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग लक्की नारंग तानिया नारंग उन्हों का सानू मैसेज मिल गया। बाघा पुराना तो सतनाम सिंह रखना अमरजीत कौर रखरा पोतरा धीक फतेह सिंह रखरा पोतरी जसगुन रखरा उन्हों का सानू मैसेज मिले। यह मैसेज मिले सुखदेव कलेर नरेश कलेर संतोष राणी पूजा राणी पुनीत निगा ते इन्हों का पोता जी सुबल शुभदीप कलेर वार्ड नंबर एक बलाचौर तो इन्होंने सानू मैसेज किया है। पिंड के डाकखाना निमनाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जिंद हरियाणा तो जसवीर सिंह अरोड़ा जतेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर उन्हों का मैसेज सानू मिल गया। इस तरह गांव गढ़ी कोटाहा ज़िला पंचकुला हरियाणा तो सराजुद्दीन अंसारी नसीबम बेगम अकरम अंसारी शानिया मोहम्मद इलियास मुशाहिद हुसैन रौनकी खान अक्सा अंसारी आयशा अंसारी उमर अंसारी ते समीना अंसारी उन्हों का सानू मैसेज मिले। यह मैसेज है जी पिंड के डाकखाना लोगर ठाकुरांवाला जिला फिरोजपुर तो सवंत सिंह गिल दलजीत सिंह गुरनूर सिंह डॉक्टर राम कुमार नारंग ते बलदेव सिंह भगवानगढ़ भुखिया तो सानू इन्होंने मैसेज किया है। पीर बन्ना बनोई रोड सुनाम तो दलजीत चीमा मनदीप चीमा राजदीप चीमा बलराज चीमा रानी डाली ते सिफत जोत सराह उन्हों का मैसेज मिलिया। ते हुण वधदे आ गीत दे वल हरचरण गरेवाल ते सुरेंद्र कौर दीआं आवाज़ां दे विच प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे आ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया

अनिल बिश्नोई, मोनिका, अजय सिंह, सुषमा शेफाली, रिजम शशि, अर्पित अभिनव, सत्या कानू, रोहिणी आशमा, दीक्षा अर्पित, शशि विश्नोई, हरिपुरा अबोहर तो इन्होंने मैसेज किया है। ये मैसेज मिले पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा होना दा, सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह, पिंड शाजली, जिला संगरूर तो प्रोग्राम दे विच आए ने, गोबिंदपुरा सिक्कर राजस्थान तो, दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत होना दा सानू मैसेज मिले। इस तरह मिलंका सिरसा तो, राम स्वरूप लोहानीवाल, परमजीत पम्मी ते पूजा वर्मा हुना दा सानू मैसेज मिलिया। ये मैसेज सानू मिलिया पिंड खाने की ढाब मलोट तो, शमशेर सिंह, कौलधर, जसविंदर कौर, करण प्रताप सिंह, मनरीत कौर, तरनवीर सिंह ते मनताज हुना दा सानू मैसेज मिलिया। श्री गंगानगर तो जगमोहन सिंह अरनेजा, बजरंग शर्मा, सोनू मिंटू, करण हरगुन हुना दा सानू मैसेज मिलिया। महसगेट नाभा तो सोमदत्त, ज्योति रानी, कैरव, गुरमन्नत हुना दा मैसेज सानू मिलिया। इस तरह एस एम जावेद गमला झारखंड तो मैसेज सानू कर रहे ने। पिंड ककराली जिला पंचकुला तो वेद प्रकाश, प्रजापति, लक्ष्य, एंजल, नेहा, अंजलि, गुरमीत कौर हुना दा सानू मैसेज मिलिया है जी। तो इन्हां दे नाल ने शुभम, लवली, प्रजापति। इस तरह यह मैसेज सानू मिलिया है जी गांव फ्रांसी हिसार तो, राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी ते पुष्पिंदर कुमार डुड्डी हुना दा। बीड शहर महाराष्ट्र तो नंद किशोर कट्टे, संगीता कट्टे, साक्षी कट्टे, जयश्री ते अंजलि करवा हुना दा मैसेज सानू मिलिया। बाला साहिब करवा, राम निवास अग्रवाल ते धनजे ते पी बी कुलथे हुना दा सानू मैसेज मिलिया। इस तरह गांव खारिया ढानी जिला सिरसा हरियाणा तो सतवीर सिंह विचारनिया, दविंदर राजपाल, अभिषेक जोगेश, पूजा आरजू, नव्या विचारनिया हुना दा सानू मैसेज मिलिया। ये मैसेज है जी ताज मुहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहाँ, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड तो इन्होंने मैसेज किया है। तो हुण वधदियां प्रोग्राम दे विच कीते वल, नरिंदर बीबा ते के एल अग्निहोत्री दियां आवाज़ां दे विच प्रोग्राम दा अगला गीत तुहाडे तक पहुँचा रहे हैं।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से उड़ीसा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपये की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपये तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया। ये कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना

0: करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेब 347.6 मीटर या नेट सूत 73 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश है परिवारिक प्रोग्राम वसदे वीड़े।

0: नमस्कार, वसीफड़ी प्रोग्राम लैके हाजिर हो गया श्री मैं तरन ते मेरे नाल ने अनुराधा
1: जी। बिल्कुल अनुराधा हाजिर अज दा प्रोग्राम वास्ते वेड़े लैके।
0: की हाल चाल है अनुराधा?
1: बिल्कुल हाल चाल ठीक है जी। देखो अज सवेरे जदों मौसम ने थोड़ा जिहा मिजाज बदलिया है ना, थोड़ी बूंदाबांदी होई है, बारिश होई है, मौसम बड़ा सुहावना हो गया ते देख के रूह है जिहड़ी खुश हो जाती है।
0: रूह खुश हो जाती है। और अज तुहानू पता है कि इन्ना अच्छा मौसम सी ते एक चीज़ करके बड़ा मज़ा आया
1: जी।
0: कोई चीज़ चल रही है ना, योगा पंद्रवाड़ा चल रहा है ते आज योगा करके उन्नी ज़्यादा स्वेटिंग ते पसीना नहीं आया जिन्ना अगे आंदा।
1: बिल्कुल। और देखो आप देखते हैं ना कि आप ही नहीं जो जीव जंतु पेड़ पौधे है वह भी इस मौसम नूं देख के पता लगता कि हाँ खुश ने
0: जी। मौसम चाहे किस तरह का भी होवे पर एक रूटीन जी है, कंसिस्टेंसी जी है वो साड़ी जिंदगी दे विच जरूरी है। और जिवें कि तुसी सारे जानते हो कि असी योगा मनाने हाँ है ना, और ये 7 जून तो शुरू होंदा है ते 21 जून तक असी योगा मनाने हाँ। तो अनुराधा तुहानू की लगता है जदों आसे पासे लोग योगा करते हैं तो आपनू भी खुशी होंदी है ना कि लोग अवेयर ने,
1: बिल्कुल,
0: सेहत के प्रति जागरूक ने?
1: और गल ये है कि जदों अजिहे दिनों असी मनाते हाँ वह दिन ने जोड़े वैसे तो वह फिक्स होंगे ने कि इन्हों दिनों मनाया जाए ना, पर पूरा साल ही असी जेकर इन्हों चीज़ों अपनाइए तो अपनी सेहत को लैके शरीरिक और मानसिक तौर पर तंदुरुस्ती है जी जेकर असी प्रण कर लिए करना ही है इनू ठीक, तो मैं लगता हर रोज़ ही जोड़ा यदा दिन ही है।
0: बिल्कुल। और जिस तरह तुसी कहा कि ये दिन चाहे 15 दिन लोगों को जागरूक करन वास्ते मनाया जाता है, पर असी रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच जे इन चीज़ों को शामिल कर लिए, अपनी रूटीन बना लिए तो बहुत सारिया बीमारियों तो असी बच सकते हैं।
1: बिल्कुल। और योग है जिहड़ा है सिर्फ कसरत ही नहीं बल्कि दिमाग की शांति लिए, एकाग्रता लिए, निरोग जीवन जीवन दे लिए एक उत्तम साधन है।
0: बिल्कुल साधन है। और जिवें असी लगातार सुनते रहने कि अजकल जवान बच्चों चाहे किसी भी उम्र असी है एनजाइटी हो रही है, डिप्रैशन हो रही है, टेंशन हो रहा है, सो जे असी रोज़ योगा करते हाँ इनू अपनी जिंदगी दे विच शामिल करते हैं तो इन चीज़ों तो असी बहुत जल्दी मुक्त हो सकते हैं।
1: बिल्कुल। और देखो जिस तरह हुण 21 जून नू योगा दिवस मनाया जा रहा है तो मैनू लगता कि ये कौमांतरी जिहड़ा योगा दिवस है इस मौके पर सानू प्रण करना चाहिए कि रोज़ाना ही कुछ समय जिहड़ा योग नू देईए तो अपने परिवार तो समाज नू असी सेहतमंद बनाईए।
0: बिल्कुल। और अनुराधा जिवें कि तुसी जानदे हो कि अज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सैक्सुअल वायलेंस इन कन्फलिक्ट भी है, यानी कि संघर्ष दौरान जिनसी हिंसा के खात्मे लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस भी अज के दिन मनाया जाता है
1: जी। बिल्कुल। तो वैसे भी तरन जी असी देखते हैं ना कि साडा जिहड़ा इतिहास है वह गवाह है कि जो भी दुनिया के कोने के जिहड़ियां जंगा हुंदियां ने, हथियारबंद जिहड़े संघर्ष हुंदे ने, तो कोई भी जिहड़े ग्रह युद्ध हुंदे ने, तो उस वेले जिहड़ी सब तो वड्डी कीमत है उस वेले मासूम जिहड़ियां जिंदड़ियां ने खासकर महिलावां ते बच्चियां नूं चुकाउणी पैंदी है।
0: बिल्कुल।
1: ते जंग दे मैदान दे विच सिर्फ हथियार ही नहीं चलते बल्कि कई बार सैक्सुअल वायलेंस है जिहड़ी उहनूं भी घिनौने हथियार वजो वरत्या जांदा है जिहड़ा कि इंसानियत दे मत्थे उत्ते बहुत वड्डा कलंक है।
0: ते
1: इह जिहड़ा दिन है इसे दिन नूं असीं जदों मनाउण दा साडा मुख मकसद इही है कि इस संघर्ष दौरान जिहड़ा जिनसी हिंसा दे खात्मे नूं उहनूं खत्म कीता जाए इस करके दिन जिहड़ा मनाया जांदा है।
0: बिल्कुल। असीं अपने सुनण वालियां नूं दस दईए कि यूनाइटेड नेशन ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 2015 दे विच इस दिवस की घोषणा की सी। 19 जून की जिहड़ी तरीक है इस लई चुनी गई क्योंकि 19 जून 2008 नूं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल ने संघर्ष दौरान जिनसी हिंसा नूं रोकण लई एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किया।
1: बिल्कुल जी। और ये जिहड़ा दिन है एक तारीक ही नहीं है बल्कि ये दिन लखां पीड़ितां दी आवाज़ भी है जिन्हां दे संघर्ष दौरान जिस इस तरह के जिहड़े दुख ने उन्होंने झले ने।

0: खूबसूरत है। डॉक्टर सतीश वर्मा बहुत बहुत स्वागत है जी आया नू उमरां दे पेंडे प्रोग्राम च।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सुखजी जी, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया रेडियो ये मेरे नानकियां वर्गी थां है, मैं इन बार इतने आया सो
0: जी
1: तुसी मौका द्वारा फेर दिता
0: जी
1: जी।
0: डॉक्टर सतीश वर्मा, नाटक होवे
1: जी,
0: लेखनी होवे, नाटक दा मंचन होवे
1: जी,
0: ते घर दे विच संगीत दा माहौल होवे
1: जी,
0: किताबां दे नाल गूढ़ी आड़ी होवे
1: जी जी,
0: संस्कृत दे नाल भी जुड़े हुए होवो
1: जी,
0: अंग्रेजी हिंदी कुछ भी ना छड्या होवे, इन्ना कुछ डॉक्टर सतीश वर्मा किवें संभव कर पाए?
1: इस तरह भैन जी, सुखजीत जी की जिंदगी मिलती एक बारी। मेरी ऑटोबायोग्राफी मैं लिखनी है, हाले मैं ना आउट नहीं किया, अज पहली बार कर रहे हैं
0: जी,
1: उहदा ना इक्को बार दी खेड।
0: ओ
1: एक बारी जिंदगी मिलनी, एक बार चल जाना है। अगले जन्म होंदे है नहीं होंदे आपां किसे चक्कर च पैंदे नहीं, पर मेरे मुताबिक एक जिंदगी आ। ते जिवें नींबू नूं निचोड़दे आ ना आपां
0: जी,
1: उदां नींबू निचोड़ी दी आ। ते मैं हर वर्तारे नूं बड़े ध्यान नाल देखदा। मेरे एक दोस्त ने राज बब्बर, बहुत बड़े फिल्म स्टार ने, फिर उनका बेटा मेरा दोस्त बन गया, उनकी शरीके याद ने नादरा बब्बर जी, वह मेरे फ्रेंड ने, वो थिएटर करते अक्सर पटियाले थिएटर कर आते। तो मेरा नवा नवा विआह होया सी, तो उन्होंने असी लंच पर बुलाया, तो मेरी वाइफ परमजीत कौर बेदी, परमजीत वर्मा जो भी कही, वो खाना बना रहे थे। तो नादरा बब्बर बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी, सिनेमा देखा होगा
0: बिल्कुल।
1: तो वह जिन दिन खाना आ रहा है, तुम्हें पता उस औरतों तो वेलियाँ बहदियां नहीं, तो मैं इसत्री चित वाला पुरुष है, मैं ही वेला नहीं बहुत, मैं भी कम कर गंढे कट ले प्याज कर ले, मैं वेला नहीं बह सकता। तो वह बैठे बैठे उन्होंने ना सलाद तो नींबू निचोड़ना शुरू करता। हूँ एड्डी जबरदस्त पर्सनैलिटी, बड़े थिएटर के एक्टर, वो जब नींबू निचोड़ी गए निचोड़ी गए निचोड़ी गए निचोड़ी गए, जब मैं देखा तो उन्हें उंगलों के पीला पीला रंग देख रहा, यानी पत्ते का सिर्फ रंग देख रहा, ऐदा नींबू निचोड़िया। उतों फिर मैं इनसाइड ली कि जिंदगी ऐ निचोड़नी चाहिए आ, कि बस पीला पत्ता बड़ी मुश्किल ना दिखे
0: जी।
1: सो इसलिए उमरां दे पेंडे जेड़े है, मैं दिन के 24 घंटे, हफ्ते 168 घंटे, महीने के 720 घंटे, साल के 84 घंटे, लीपा साल के 84 घंटे, तो मैं पल पल छिन छिन काम करदा, सुत्ता पिया भी काम करदा। पिछले 50 साल तो जद मैं सुर संभाली 18 साल एम ए पंजाबी करन आया सी, ते 20 घंटे काम करदा, 4 घंटे सौना, तो फिर 4 घंटे भी मेरे सुपने चलते ने। सो मैं नींबू वांग निचोड़दा जिवें नादरा जी ने नींबू निचोड़िया सी उदों शिकंजवी वाला
0: जी, जी,
1: सो उदां वो मैं एक मेटाफर वरत्या
0: जी,
1: जी।
0: यानी कि तुसीं भी शिकंजवी बनाउण दे माहिर हो चुके हो।
1: बस जी ये देख लो भी जिंदगी नूं मैं कह लो भी निचोड़ दिना, मैं एक जी छिण जड़ा है वह बकाया नहीं जाता, बस नैल दिन दोस्त बना लैंना, हर बंदे मिलना गिलदा है, मैंने इंट्रोडक्शन कराने की लड़ नहीं पैदा, कहते जी आओ जी, मैं आप हाँ भी तेरा किन्ना बच्चा, तेरा किन्ना, तेरा कितना, उस देखने मैं सारे मिला आया। आई सेव टाइम
0: जी,
1: जब असी टाइम बचा लो तो किडे वे वे बंद, जिस धरती से बाबे नानक के पैर पै गए उस तो बाद कौन रह गया।
0: वाह जी वाह,
1: उन्होंने 24 साल 36,000 किलोमीटर सफर करके जो ज्ञान वंडिया, जो ग्रहण किया, नाल 10 साल वड्डा दोस्त लैके मरदाना, फिर वो सी जिन्हों याद हो जाता सी, कलाकार सी, कलाकार बरादरी दे विचो सीगा, उन्हें सारा हिफज कर लिया, वह फिर अगे किन्नी देर चलिया, फिर पिछे गए तो अपने तो 3 सदियां पहला का हिफज कर लिया, शेख फरीद जी का मिल गया, उस तो बाद फिर जदों 10 जोतां ते 11वीं जोत साढ़े कोल श्री गुरु ग्रंथ साहब सामने आए, उदों तक इन्ना लम्मा सफर है कि हर पड़ाव उत्ते अगे वधदा गया
0: जी।
1: सो एडे वड्डे सी विरसे दे मालक। थोड़ा पिछे चल जाइए, साड़ी सभ्यता 5000 साल पुरानी साड़ी सिविलाइजेशन है, 3200 साल पहला हिंदुस्तान च पहली बारी लिखित रचना आ गई सी ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उस तो बाद फिर 6 शास्त्र, 18 उपनिषद, उस तो बाद श्रुतियां, एडा वड्डा ज्ञान का भंडार। ते पछम दे 2500 साल पहला रचना आई, सुकरात ने बोलिया, अरिस्टोटल ने उचारिया, जो अरिस्टोटल ने लिखिया

0: जी बिल्कुल जी, सेहत तां जरूरी है ही, क्योंकि असीं गल कीती सी योगा डे दी, ते गल ए है कि असीं अपनी सेहत नूं लै के ना, मैनूं लगदा तरन जी कई वारी ना समझौता कर लैंदे हाँ जां अणगहली कर लैंदे हाँ, जदकि जिंदगी दा सब तो अहम हिस्सा ही सेहत हुंदी है। सो
1: बिल्कुल
0: सानूं अपनी सेहत दा जिहड़ा ध्यान जरूर रखना चाहीदा है। ते अज जिहड़ा अगला साडा सिलसिला है, खासम खास सिलसिला है जी, उमरां दे पैंडे,
1: जी
0: जिस विच डॉक्टर सतीश वर्मा जी ने अपनी जिंदगी दे जिहड़े अनुभव साडे नाल सांझे कीते ने, ते आओ सुणदे हां
1: उमरां दे पैंडे।
2: उमरां दे पैंडे प्रोग्राम च तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत। अज दे इस प्रोग्राम च जिन्हां दे उमरां दे पैंडे असीं मापणे आ ना, जिन्हां दी जिंदगी ते झात मारनी है, ਉਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕੇ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਅਦਾ ਹੀ

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
3: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802827 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीद

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 347.6 मीटर क्षेत्र किलो हर्ट्ज, टीआरएम 854 किलो हर्ट्ज, एफएम 100.8 मेगा हर्ट्ज, एफएम 100.9 मेगा हर्ट्ज, डीटीएच की आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। तो दोपहर के हुण 1:16 मिनट 35 सैकेंड हो रहे हैं। समा हो रहा है प्रोग्राम फौजी वीरां दा, आओ सुनते हैं।

जय हिंद भाजी वीरो, तुहाडे मनोरंजन दे लई हिंदी फिल्मां दे विचों गीत लैके हाजिर होए हां ते प्रोग्राम दी शुरुआत कर रहे हां। ये जवानी है दीवानी फिल्म दे विचों लए श्री राम दी आवाज़ दे विच गाए इस गीत दे नाल।

0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत सिकल सेल की बीमारी को 2047 के मुकर्रा निशाने से पहले ही खत्म करने की राह पर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोबारा कराए जाने वाले नीट यूजी 2026 इम्तिहान से पहले टेलीग्राम पर मरकज की तरफ से लगाई गई आरजी बंदिश को बरकरार रखा है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल में वादी सिंध मुआहदे को फरसूदा बताया है। उसने दहशतगर्दी को पनाह देने पर पाकिस्तान की मजम्मत भी की है और मेक्सिको जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा कर फीफा आलमी कप का 32वां राउंड क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया का अपना 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है। फ्रांस के अपने दौरे में उन्होंने एवियों में G7 समिट में शिरकत की। उन्होंने G7 समिट से अलग अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और दीगर शख्सियतों से मुलाकात की। इससे पहले जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के शहर नीस में भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह किया, जिसमें भारत, फ्रांस और दीगर मुल्कों के सरकर्दा स्टार्टअप्स, इख्तिराकार और असासाकार यकजा हुए। स्लोवाकिया के अपने दौरे में जनाब मोदी ने जमहूरिया स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी से ब्रतिस्लावा में सदारती महल में मुलाकात की। एक खसूसी तकरीब में स्लोवाकिया के सदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,1400 करोड़ रुपये मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीब से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। मेहनत और रोजगार महकमे के वजीर डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजमीन को बाजाब्ता अफरादी कुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% खवातीन हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एतमाद जाहिर किया है कि भारत से सिकल सेल की बीमारी 2047 के कौमी निशाने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने खून की इस जीनियाती बीमारी के बारे में खास तौर पर कबाइली बिरादरियों में बेदारी लाने की मरबूत कोशिशों के लिए कहा। सदर जमहूरिया आज सिकल सेल के बारे में बेदारी लाने के दिन के मौके पर मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में एक रियासती सतह के प्रोग्राम से खिताब कर रही थी। इस मौके पर गवर्नर मंगूभाई पटेल और वजीर आला मोहन यादव भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने सभी रियासती सरकारों और अफसरान से अपील की कि वो इस बीमारी को मामूली न समझें, क्योंकि ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिशें की जानी चाहिए, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है।
1: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9,000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की
0: सदर जमहूरिया ने रियासती सरकार की तारीफ की कि उसने सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के कौमी मिशन के तहत कामयाबियां हासिल की। सदर मुर्मू ने प्रोग्राम के दौरान एक खसूसी नुमाइश भी देखी जो 2047 के इस मिशन के तहत कायम की गई है। नुमाइश में सिकल सेल की बीमारी की रोकथाम, तशखीस और इलाज से मुतालिक मुख्तलिफ इकदामात को नुमाया किया गया है। इस नुमाइश में कबाइली इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के काम को भी उजागर किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रहेंगी। वो मयूरभंज ज़िले में दांडी बोस एयर स्ट्रिप पहुँचेंगी और इस खित्ते में हिफ्जान सेहत, बुनियादी ढांचे और अवामी खिदमात को मुस्तहकम बनाने के मकसद से मुनाकिद किए जाने वाले कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया एम्स भुवनेश्वर के जेर एहतमाम एक बड़े तिब्बी कैंप का इफ्तिताह करेंगी और एम्स सेटेलाइट सेंटर को अवाम के नाम वक्फ करेंगी, जिससे इलाके में हिफ्जान सेहत से मुतालिक खसूसी खिदमात की तौसी होगी। सदर जमहूरिया देही इलाके में पाइप के जरिए पानी की सप्लाई का एक बड़ा मरबूत प्रोजेक्ट भी अवाम को वक्फ करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत कानकनी से मुतासर 113 गाँवों में पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। सदर जमहूरिया हाथ बड़ला में ब्रह्मा कुमारीज के मातृशक्ति

0: शक्ति भवन, एक खसूसी सर्किट हाउस और नए बनाए गए राय रंगपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का इफ्तिताह भी करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि वक्त आ गया है जब फौजदारी निज़ाम इंसाफ को मुल्क के हर शहरी के लिए आईन में दिए गए हकूक को हासिल करने का एक वसीला बनाया जाए। नई दिल्ली में 2026 की फिंगरप्रिंट से मुतालिक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क का यह निज़ाम यकसर तब्दीली के अमल से गुजर रहा है और इसे मुनज़्ज़म तौर पर ताज़ा तरीन शक्ल दी गई है ताकि ये मौजूदा दौर की ज़रूरतों को पूरा कर सके। उंगलियों की के निशानात की खुद ब खुद शनाख्त करने वाले इस कौमी निज़ाम नेफिस के बारे में जनाब शाह ने कहा कि इस तरह के बहुत से केसेस हैं जिनमें इस निज़ाम से इंतहाई पेचीदा केसेस को आसानी से समझने में बड़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि नेफिस को फिलहाल इसकी गुंजाइश के महज 10% हिस्से को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका इस्तेमाल महज मुजरिमों का पता लगाने से भी ज़्यादा किया जाना चाहिए। वज़ीर दाखला ने जोर देकर कहा कि नेफिस की कामयाबी का इनसार उन आदाद व शुमार को इकट्ठा किए जाने पर है जो हर एक मौके वारदात से हासिल किए जाते हैं।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती
0: है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2026 के 21 जून को कराए जाने वाले दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम मैसेज प्लेटफॉर्म तक रसाई पर आर्जी तौर पर बंदिश लगाने के मरकज के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा है कि यह कदम नामुनासिब नहीं है और कानून के मुताबिक है। जस्टिस तेजस कारिया ने कहा कि हुकूमत ने इत्तलाती टेक्नोलॉजी कानून की दफा 69A पर अमल करते हुए ये कदम उठाया है और बंदिश के इस हुक्म की भरपूर वजूहात मौजूद हैं। टेलीग्राम ने इस हुक्म को चैलेंज किया था और तफरीक बरते जाने का इल्ज़ाम आयद किया था। उसने दलील दी थी कि उसने नीट से मुतालिक गैर कानूनी मफाद के सैकड़ों लिंक्स हटा दिए हैं और हुकाम के साथ तआवुन किया है। इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कौमी अहलियत व दाखिला अंडर ग्रेजुएट नीट UG के दोबारा इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सरकारी व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। ये इम्तिहान इतवार को होना है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल के 62वें इजलास में जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इस जलसे में इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट और अलग न होने वाला हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि वह अपने अंदरून मुल्क चैलेंजों और दहशतगर्दी के तई अपनी लगातार हिमायत से तवज्जो हटाने के अपने प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए भारत ने इल्ज़ाम आयद किया कि खित्ते में बढ़ते हुए मुजाहिरों और बेचैनी से वसी पैमाने पर फैलती हुई बेचैनी जाहिर होती है, जिसमें बुनियादी हकूक को लगातार दबाया जा रहा है और उनसे इनकार किया जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में आज सुबह मैक्सिको ने जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इस तरह मैक्सिको की टीम नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया का अपना 5 रोज़ा तारीखी दौरा मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर आज़म मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत सिकल सेल की बीमारी को 2047 के मुकर्रर निशाने से पहले ही ख़त्म करने की राह पर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोबारा कराए जाने वाले नीट 2026 UG इम्तिहान से पहले टेलीग्राम पर मरकज की तरफ से लगाई गई आर्जी बंदिश को बरकरार रखा है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: फौजी वीरों, खबरों के प्रसारण तो बाद तुहाडा प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हुन प्रोग्राम दे विच अगला गीत सुनते हैं। बच्चन पांडे फिल्म दे विच लिया गीत नूं आवाज़ां दित्तियां ने अरजीत सिंह ते श्रेया घोषाल ने।

0: ਹੌਲੀ ਨੱਚਣੀ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚਣੀ
1: ਐਵੇਂ ਤੋੜਦੀ ਨਾ ਬਹਿਜਣੀ ਤੂੰ ਲੱਕਣੀ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚਣੀ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚਣੀ
0: ਐਵੇਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿਜਣੀ ਤੂੰ ਲੱਕਣੀ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚਣੀ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚਣੀ ਐਵੇਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿਜਣੀ ਤੂੰ
2: ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੋ ਖੇਲ ਖੇਲ ਮੇ ਲਏ ਇਸ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜੈ ਹਿੰਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ
3: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया

0: की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव

0: पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुँच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली NEET UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही

0: नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178289802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता रहा हो।
1: Untouched by the profound changes of the past 6 decades.
0: भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।
4: मीडियम वेव 347.6 मीटर या 173 किलोहर्ट्स, TRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुन पेशे प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम दे विच आओ स्वर्णी अमला ते साथियां दे गाए लोकगीत सुनदे आं। सब तो पहला सुनदे आं इन्हां दा गाया लोकगीत रांझे दा शिकवा हीर दे नाल।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठिया मिठिया ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते बिल्कुल ऐसे नू कहंदे पक्की दोस्ती ते पक्की दोस्ती साडे नाल निभांदे ने साडे दोस्त चिट्ठियां दे राही ते चिट्ठी सानू भेजी है जी कहंदे साडा हैगा हे हसमुख रेडियो स्रोता संघ बहुत ही वधिया नाम रख्या जी इन्हां ने ते पिंड इन्हां दा पै जांदा है गोबिंदगढ़ माची वाला तहसील श्री करनपुर ते जिला श्री गंगानगर। लिखण वाले ने जी राजू टुटेजा खुशदिल उर्मिला गुड्डू जीनू मनु आदित्य ते इन्हां दे नाल मंगल पल्लेवाल अमृत पड़वाल ते इस्माइल टुटेजा ते ओम प्रकाश चौहान मनु प्रकाश शिव प्रकाश वेद प्रकाश चौहान साधुल शहर तो लिख रहे ने ते जिला श्री मुक्तसर साहब पै जांदा पिंड हैगा मोला ते लिखण वाले ने पाल गिल गुरदयाल गिल साधु गिल दिशा मोला ते दर्शन बराड़ मलकीत कुड़ियाणा मलोट तो कुलवंत गिल जसवंत गिल ते रमन गिल इन्हां दे नाल इस चिट्ठी दे विच शामिल हो गए ने जी ते पिंड हैगा अमीर शाह वाला तहसील जीरा फिरोजपुर तो चिट्ठी है मुख्तियार सिंह वारवाल इन्हां दे बहुत सारे कहिंदे दोस्त आ साडे नाल इस चिट्ठी दे विच ते श्री फतेहगढ़ साहब तो चिट्ठी है जी लिखण वाले ने रामनाथ हतापुर ते पोते इन्हां दे हैगे आ सुखमनजीत सिंह ते पोती है जी सहजप्रीत कौर ते बहुत ही खूबसूरत है चिट्ठियां ने ते अज बहुत ही खूबसूरत बहुत ही स्पैशल दिन मनाया जा रहा है देश भारत दे विच राष्ट्रीय रीडिंग डे ते अज दे दिन जिहड़ा असीं स्पैशली रीडिंग नूं दिंदे आ बहुत ही वधिया हुंदा पढ़ना लिखना कहिंदे बहुत वधिया हुंदा ते जे सानूं शौक पै जांदा पढ़न दा ते इस तों वध के कोई वधिया शौक नहीं हुंदा क्योंकि असीं जदों पढ़दे हाँ एक तां साडा दिमाग रिलैक्स हुंदा ते दूजा की हुंदा कि सानूं बहुत सारा ज्ञान मिलदा ते तीजा की हुंदा कि सानूं इक इदां दा शौक लग जांदा कि सानूं इक पक्का दोस्त मिल जांदा साडी बन जांदी इक पक्की जोड़ी किताबां दे नाल।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते बिल्कुल जी जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है सानू उदो जदों धुप्प दे नाल हो जाती है छां धुप्प ते छां दी जोड़ी सानू बहुत वधिया लगती है स्पैशली जे असी अज दे दिन दी गल करिए सवेर तो मौसम कुछ इदां दी जोड़ी बना रहे जो कि बहुत सानू मज़ा दिंदी है एक आनंद दिंदी है ते आनंद जिंदगी दे विच बने रहे असी दुआ भी करदे आ ते चिट्ठी है जी मॉडल टाउन करनाल तो सुधीर नूतन संदीप गुकलानी नरेंद्र तनेजा जगमोहन प्रजापत ते गुरविंदर सिंह जी दी ते लिख रहे ने जी वरुण जोलका तो चिट्ठी महेंद्र सरकटे ते विचा ते मिलेन तिना दे नाल ते महाराष्ट्र बीड शहर तो लिखण वाले ने प्रकाश पगारिया प्राग पगारिया ते प्रदीप ते केशव पटेल ते राम निवास अग्रवाल फरमाश इन्हां सारिआं दी है ते आवाज़ हरभजन मां दी बहुत ही खूबसूरत

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठिया मिठिया ते तुसी ट्यून कीता होए ए आई आर पंजाब ते अज असी गल कर रहे हैं जी पढ़न दी ते पढ़ना कहिंदे कि जरूरी नहीं कि बैठ के ही पढ़ना होंदा कई बार असी तुरे जांदे बहुत कुछ पढ़ जांदे आ ते उस दा सानू बहुत फायदा हो जांदा है। असी बस दे विच बैठे हां कार दे विच बैठे हां ते राह दे विच असी बोर्ड जिहड़े लगे आ पढ़दे आ ते कई बार सानू याद आ जांदा कि ओह जगह उत्थे सी ते उत्थे असी जाणा सी उदों देखी सी ते उहदा सानू बहुत फायदा हो जांदा। इस करके पढ़न दा जिहड़ा शौक है बहुत वधिया शौक है ते लिखण वाले ने जी जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया नवनीत भाटिया ते पप्पी भाटिया आदर्श नगर मलोट तो राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मेहंदी शर्मा सौरभ शर्मा शाइना ते निवान शर्मा अपरा तो रूपलाल नाहर अमर ते शेखर ते अंबा प्रधान ते राजा पलवान ते परमिंदर बंगा ते पिंड हैगा जी चाहल कलां ते नवां शहर तो ये चिट्ठी है अमरजीत बंगा परमिंदर ते राजा ते कुलविंदर कौर ते अंबा चाहल ते रावर करनाल तो ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ कालिया लिख रहे ते जिला पै जांदा है लुधियाणा ते पुराणी मंडी मुल्लापुर दाखा तो इन्हां दी चिट्ठी है जी राजेश जैन अरुणा जैन दीपक गौतम अरहिंत ते अरिहंत ते सूरबी जैन ते सीमा जैन ते सारिका ते नगीना जैन सुनीता बनीता ते मनोज ते समता जैन फरमाइश इन्हां सारिआं दी है ते आवाज़ है जी गुरनीत दोसांझ दी।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते आदर्श नगर मलोट तो लिख रहे ने जी राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना ते निवान शर्मा, पिंड नथाणा, जिला बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता ते लिखण वाले ने जी चकला बाजार समाणा तो पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल ते हसमुख जिंदल, ते मुहम्मदपुर सोतर टाणी रतिया तो जीवन सिंह बुक, शंटी बुक, सिमरन बुक, कौशल्या राणी, गुरशिंदर बुक, बब्बू बुक ते दीप ते किरत बुक, भूषण खेड़ा ते जशन ते सारा बुक परिवार। फरमाइश इन्होंने सारा दी हसमिता दी खूबसूरत आवाज।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते चिट्ठी लिखी है जी पिंड जंड वाला चढ़त सिंह तो राकेश नरेश जगदीश अनिकेत त्यांश ने ते पिंड है पंगाला जिला फाजिलका तो जगतार गिल गुरमीत गिल नाजम गिल सुखमन गिल ते कमलदीप गिल ते एसके शर्मा चिट्ठी लिख रहे ने ते पिंड पक्खी खुरद फरीदकोट तो सतनाम सिंह गिल गुरिंदर गिल गुरलीन ते सारा गिल परिवार ते डब वाली हरियाणा तो JK बकौलिया श्रीमती सुनीता बकौलिया संजय अनिल ते मीनू बकौलिया ते पिंड है कैरो जिला तरन तारण तो चिट्ठी लिखण वाले ने जी गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शमी रजनी आकाश ते मनहर ते पोतरा गुरशबद इन्हां दे नाल ते नेड़े पै जांदे कहिंदे धर्मशाला दे ते पिंड है कोठले अपलू श्री मुक्तसर साहब तो चिट्ठी है सीता राम केसरी सुखा सिंह सरपंच कोठे ढाबे वाले ते देवी कोठली किंदा कुंडा फॉर्म बराड मोटर वाले ते नीला सरां पिंड गंगा तो ते काला हलवाई रूप सिंह सर्विस स्टेशन राणा नंबरदार ते धर्मा कोठली इन्हां ने अपना अपना सरनेम जिहड़े ओह प्रोफेशन दे विच तब्दील करके इहदे विच लिखिया जी चिट्ठी दे विच ते बस अड्डा हाजीपुर तो सोनू गेसी बाली लाली जीवन प्यारे लाल टोनी मिस्त्री ते इंद्रपाल हलवाई कहिंदे जी असीं हलवाई दा काम करदे आ तुसीं कोई भी मिठाई खाणी है तां इहनां दे कोल तुसीं जा सकदे हो ते फरमाइश इहनां सारिआं दी है जी ते फरमाइश दे उप्पर गल हो रही है जी सूट दे बारे ते सूट दे बारे की गल कर रहे ने विरासत संधू सुणदे इस गीत विच।

0: कानून लागू करन वालियां एजेंसियां नाल मिल के काम कर रही है। पटियाला दे नूर सिंगला ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वालों करवाई गई चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फाइनल प्रीख्या विच 600 विचों 499 अंक हासिल करके ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किया है। अते पंजाब सरकार वालों सूबे विच अनुसूचित जातां दे नौजवानां लई रोज़गार दे मौकियां नूं वधाउण दे उद्देश नाल नैशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क नाल जुड़े मुफ्त रिहायशी हुनर विकास सिखलाई प्रोग्राम दा ऐलान कीता गया। ए सी हुण तक दीआं मुख खबरां।
1: इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
0: मीडियम वेब 343.6 MHz KHz TRM 864 KHz FM 100.8 MHz FM 100.9 MHz DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। आओ हुन उस्ताद बरकत सिद्धू दे गाए सूफियाना कलाम समात फरमाने आ। सब तो पहला गाया इन्हां दा कलाम सुनदे आ, नाल सज्जन दे रहिए।

अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। ये कथन शब्दी महिमा प्रगट करता है। तुर्की बाणी जो गुरु साहबान संता महापुरशा भगतां पट्टा सिखां अते होरना महापुरशा दी रसना तो उचारी गई, वो अमृतमयी है, जिसनू सरवण करके इंसान परम गति प्राप्त कर सकता है। तांते फिर ऐसे अकाल पुरख तो वारने जाना चाहिदा है, जिसते अमृतमयी बोल असी सरवण करते हाँ ते मन विच वसाउंदे हाँ, मन आनंदित हुंदा है। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। सरवण करदे हां भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता।

कोल कुमाई लालना गुरमन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। इस शब्द का गायन कीता सी भाई बख्शीश सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। उस परमात्मा नाल अथा प्रीत रखन वाले गुरमुख जना नू उस इलाही सद दितांग हुंदी है। जे कोई गुरु का प्यारा गुरु के बचना नू अलाउंदा है तो फिर बड़े प्यार नाल उस सच्ची सद नू गुरु के प्यारे सरवण करदे ने। सद तो भाव बचन हन, आवाज है। तेरा सदड़ा सुनी जय पाई जी को बह अलाए। सरवण करदे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उना दे जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द।

0: तेरा सदड़ा सुनी जय पाई, जे को बहे अलाए। आप जी सरवण कर रहे सो डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उना दे जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसविंदर सिंह दर्दी।
1: सूही महला पहला। जोगी होवै जोग वै, भोगी होवै खाए, तपिया होवै तप करे, तीर्थ मल मल नाए। तेरा सदड़ा सुनी जय पाई, जे को बह अलाए रहाओ। जैसा बीजे सो लुणे, जो खट्टे सो खाए, अग्गे पुछ न होवई जे सण निशाने जाए। तैसो जैसा कांडिये, जैसी कार कमाए, जो दम चित न आवे सो दम बिरथा जाए। ए तन वेची बै करी, जे को ले विकाए, नानक काम न आवे जित तन नाही सच्चा नाओ। ए मुबारक शब्द सूही राग अंदर तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का उचारण किया होया है। तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंग 730 ते सवायमान है। इस शब्द की जो रहाओ की पंक्ति है, जो मूल भाव है इस शब्द का, इस विच गुरु साहब बख्शिश करते हैं कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु अगे एक अरदास है कि हे परमात्मा, मैं तेरा सोहना जिहा शब्द सुनना चाहुंदा हाँ। सुनीजै तो पाव है सुनना चाहुंदा हाँ। असल विच गुरु साहब ने इस संसार विच वेख्या कि रब दे टंडाऊ ते हैं, पर उन्होंने रस्ता ठीक नहीं चुनिया। जो मार्ग गुरु साहब ने दस्या सी, सब तो सुखैन मार्ग है, जपन दा मार्ग, सिफत सलाह दा मार्ग, पर मनुख जिस मार्ग ते तुर पै उसनू ही सही रस्ता दस रहा सी। कबीर साहब अपने श्लोकां अंदर बख्शिश करते हैं, ढूंढत डोलें अंधगत, अरचीनत नाही संत, कह नामा क्यों पाईए बिन भगतों भगवंत। कदे समा सी कदे मनुख दे मन विच एक गल कर कर गई कि जेड़ा संसारी है वह करतारी नहीं हो सकता, जेड़ा करतारी है वह संसारी नहीं हो सकता। यही कारण जेड़े करतारी सन वह घर का त्याग करके जोगी बन के जंगलों विच चले गए, पर त्याग कुछ भी ना कर सके। जे घर का त्याग किया डेरे बना के बैठ गए, जे बच्चों का त्याग किया चेले बना के बैठ गए, दूसरे सारे संसारी गृहस्थी माया की दौड़ विच पावें बहुत अगे निकल गए, पर अंदर नू तृप्ति नहीं मिली। मन की शांति वास्ते वो करतारियां कुल जा के मथे रगड़दे रहे, अते करतारियां नू अपने तन की भुख मिटाण वास्ते गृहस्थियां दे दरवाजे ते मंगण वास्ते खलोना पिया, पर पार उतारा दोनों का ही ना होया। बाबा फरीद जी का पावन कथन है, फरीदा राती वड्डियां तुख थुख उठन पास, त्रिग तिना दा जीविया जिन्हां विडाणी आस। बाबा फरीद कहिंदे हन, त्रिकार है ऐसे जीवन ते जो दूजियां दी आस ला के बैठे हन। गुरु साहिब अज दे शब्द अंदर बख्शिश कर रहे हन, जोगी होवै जोग वै, भोगी होवै खाए, तपिया होवै।

तप करे तीर्थ मल मल नाए। जोगी तो भाव है जुड़ना, जुड़ के उस परमात्मा की आराधना करनी। अते भोगी वह है जो केवल खाण पीण ते भोगण तक ही सीमित है। जिहड़ा मनुख जोगी बन जाता है वह केवल जोग ही कमांदा है अते जोग नूं ही सीधा रस्ता दसता है अते ठीक समझदा है वह संसार तो उपराम हो गए। इसे करके गुरु नानक देव महाराज जी ने जोगियों नूं फिटकार भी पाई। जोगी ज्ञान विहूणिया निस दिन अंग लगायण शारा, बाज गुरु डुब्बा जग सारा। जिन्हां ने तपी बन के तप करना शुरू किया वह केवल तप वाले पासे ही लगे रहे, बाकी सारे पासियां तो नाता तोड़ लिया। जदों बाबर चढ़ के आया हिंदुस्तान ते उस वेले बड़े बड़े जपीशर तपीशर जोगी बैठे सन। राजस्थान दे रजवाड़िया ने बेनती की जा के कि हुण की करिए। इन्हां तपीशरां ने कहा कोई चिंता की लोड़ नहीं, असी मंत्र मार के सारिया नूं अन्ने कर देवांगे। पर होया कुछ भी ना, कोई तुरक ना होया अंधा, किने ना परचा लाया। साहब कहिंदे ने जिहड़ा इशनानी है वह केवल तीर्थां ते जा के मल मल इशनान ही करी जा रहा है। फलाने महापुरश 200 गागर नाल इशनान करते हैं, केवल कर्मकांड बन के रह गया। बाहर दे इशनान नाल अंदर दी मैल नहीं उतरती, वह तो केवल नाम द्वारा ही उतरती है। साहब जी बख्शिश करते ने भरी है हथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लई है ओ तोए, भरी है मत पापा कै संग, ओ तो पै नावें के रंग। सतगुरु जी कहिंदे मैनू ना जोग चाहिदा है, ना भोग ना तपिया अते ना ही तीर्थ इशनान दी अभिलाषा है, फिर की करना है। तेरा सदड़ा सुनीजै पाई, जे को बह अलाए। हे परमात्मा मैनू तां केवल तेरी सिफ सलाह दा शब्द ही चाहिदा है, मैं केवल उही सुनना चाहुंदा हाँ अगर कोई प्यार विच भिज के मैनू सुनाए। जैसा बीजै सो लुणे, जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ ना होवे जे सण निशाने जाए। इस जगत अंदर मनुख जो कर्म करता है उस अनुसार ही फल की प्राप्ति होंदी है। शरीर कर्म भूमि है, कर्मा का बीज बीजा जाता है, फल भी उस तरह का प्राप्त होंदा है। फिर जो बीजदा है आप नूं ही वढ़ना पैंदा है। कोई भैन भरा रिश्तेदार धियां पुत्र हिस्सेदार नहीं बनते, आपे बीज आपे ही खा। जो कमाई कीती है उही खानी पैंदी है। कर्म चंगा कीता है फल कई गुणा वध चंगा मिलेगा, पर जे बीज माड़ा बीजिया गया है तां फल भी कई गुणा वध माड़ा होवेगा। साहिब कहिंदे जोग भोग तप विच परमात्मा दी सिफत सलाह दी कमाई नहीं है, पर परमात्मा दी हजूरी विच सिफत सलाह ही प्रवान है। जिहड़ा मनुख परमात्मा दी सिफत सलाह दा निशान भाव राहदारी परवाना नाल लै के चलदा है उस नूं रस्ते विच अगे कोई भी रोक टोक नहीं पै सकदी। तै सो जैसा कांडिए जैसी कार कमाए, जो दम चित ना आवे सो दम बिरथा जाए। साहब कहिंदे ने कि मनुख जिस तरह की कार करदा ना उस तरह ही जाणिया जांदा है। जिवें सोने दे गहने बनाउण वाला सुनियार, लोहे दा काम करन वाला लोहार, मिट्टी दे भांडे बनाउण वाला कुम्हार, इसे तरह ही आत्मक जीवन दे पंध विच वी उही नियम काम करदा है जो उस परमात्मा दी भगती करदा है। भगत उसे नूं ही आख्या जांदा है। जोग भोग जां तप विच्चों भगती भाव पैदा नहीं हो सकदा। मनुख दा जिहड़ा स्वास किसे ऐसे उद्यम विच लंघदा है कि परमात्मा उस दे मन विच नहीं वसदा तां उह स्वास व्यर्थ चला जांदा है। ए तन वेची बै करी जे को लए विकाए, नानक का

मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर। इस शब्द दा गायन कीता सी बीबी आशुप्रीत कौर ते उन्हां दे जत्थे ने।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है। इनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1000 करोड़ रुपए था।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
0: प्रधानमंत्री मोदी इस समय पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है।

0: पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्धनों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुँचाने के कार्यों को पूरा किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। भारत की विदेश नीति ने देश को विश्व बंधु के रूप में स्थापित किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुशल स्टेशन प्रबंधन के लिए स्टेशन मास्टरों को सशक्त बनाने संबंधी व्यापक उपायों की समीक्षा की है। रेल मंत्री ने कल वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। बैठक में स्टेशन मास्टरों के प्रतिदिन के कार्य और उनके प्रबंधन को सशक्त बनाने पर व्यापक चर्चा की गई। इसमें मल्टी ट्रैक और उच्च घनत्व के खंडों में अतिरिक्त स्टेशन मास्टरों के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। अश्मिता चालिहा मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। सेमीफाइनल में कल अश्मिता का सामना कोरिया की पार्क गायून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343 शहर 6 मीटर यानी 874 किलो हर्ट्स, डीआरएम 854 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100 शहर 8 मेगा हर्ट्स, एफएम बैंड 100 शहर 9 मेगा हर्ट्स से डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो हुण पेश है अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ BSF ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ AK-47 ਰਾਈਫਲ, 25 ਪਿਸਤੌਲਾਂ, 368 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। BSF ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। BSF ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਚਾਲੀਹਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਕਾਓ ਓਪਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਸ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ PM ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਚਾਲੀਹਾ ਚੀਨ 'ਚ ਮਕਾਓ ਓਪਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਸ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है?
3: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया, एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेशी नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है, और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से

0: भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल अंशु, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया? क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है? ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
0: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब शीत युद्ध चल रहा था जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लेटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट्स हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते

0: और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब शीत युद्ध चल रहा था जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लेटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय हैं रशिया के। दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए। इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश हैं। तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्रप्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहाँ पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नाथेलस आपका। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को ख़त्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए CRPF और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफ़ी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5,000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने।

0: माओ इसका बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया और इसके वजह से माओस तकरीबन ख़त्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे
1: बिल्कुल
0: जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो UNLF के इंसर्जेंट थे, सबने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए, और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफ़र कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट, वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे, वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज़ बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीज़ों का एक फ़ायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण FTA है, और

0: इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो
1: बिल्कुल
0: यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें, तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ, जो कि लेटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो को अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इंपोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बन के इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में, विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहाँ के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये एक उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोरल अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसका पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के ये लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो हैं वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगातार

0: बार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीएस को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीएस हैं और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है।
1: जी
0: हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सकें, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती है, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी,
1: बिल्कुल
0: जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहाँ पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफ़ी ढीलपना आ गया, अब वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफ़ी बार सफल हुए, मैं खुद वहाँ श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफ़ी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से, पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाई रोड जाना पड़ता था, अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफ़ी इसमें

0: सुविधा पहुंची है। इसके अलावा यह है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफ़ी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफ़ी पीसफुल सिचुएशन है। अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफ़ी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में, या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
0: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहाँ से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है, क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज़्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज़्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
0: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफ़ी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश किए गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज़्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि एक शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है, और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, अब वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो,

0: अंतरराष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो यूएनएससी जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है, और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए, तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है, और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सबके बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे, और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और एलपीजी पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से, और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और एलपीजी चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और एलपीजी मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया, और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए, तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था, फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं, और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, और शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल। तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण

के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: मीडियम वेव 343 एच एच मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, डीआरएम 864 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगा हर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगा हर्ट्स, डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले स्टूडियो की कड़ी ते 7:45 हो रहे हैं। लो हुण पेश है प्रोग्राम सबरंग।
1: गुजरे हुए वाकयात मेरी आंखों के सामने फिल्मी कहानी की तरह गर्दिश कर रहे थे। एक एक पल मुझे झंझोड़ रहा था। मुझे याद है कि उस रोज़ मेरे पति राकेश मुझे डॉक्टर डेजी गुप्ता के क्लिनिक पर लेकर गए थे। डॉक्टर डेजी गुप्ता उनकी एक दूर की रिश्तेदार थी। चंद मिनटों बाद ही डॉक्टर गुप्ता ने मुझे अंदर वाले रूम में चलने को कहा और फिर अल्ट्रासाउंड के सामने लेटने को। इसके बाद वो मुख्तलिफ जावियों से मेरे पेट की जाँच करती रहीं, फिर अफसुदा लहजे में बोली, मुझे अफसोस है निशी के इस मरतबा भी तुम्हारे पेट में एक बच्ची ही पल रही है। फिर उन्होंने राकेश को अंदर बुलाकर ये बात बताई तो वो करीब करीब चीख पड़े, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भगवान मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकता, मुझे बेटा चाहिए, सिर्फ बेटा, मेरा वारिस। ऐसा कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगे। ये देखकर मैं भी खुद पे काबू ना रख सकी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर गुप्ता मुझे समझाते हुए कहने लगी, निशी तुम पहले ही एक बेटी की माँ हो, इसलिए मेरा मशवरा है कि नई मुसीबत से अभी छुटकारा पा लो। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये तो बहुत बड़ा पाप है, भगवान इसके लिए मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, मैंने डॉक्टर गुप्ता की बात काटते हुए कहा। कोई पाप नहीं है ये, एक लड़की की परवरिश और शादी करना कोई आसान काम नहीं है आजकल, फिर दो बेटियों का बोझ कैसे उठाओगी, डॉक्टर गुप्ता ने मुझे समझाने की कोशिश की। डॉक्टर गुप्ता आप एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक औरत भी हैं, आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती, आपका फ़र्ज तो ज़िंदगी बचाना होता है ना कि उसे ख़त्म करना। मैंने डॉक्टर गुप्ता को खरी खरी सुनाई तो वो राकेश से कहने लगी, तुम ही समझाओ अपनी बीवी को वरना बाद में ये काम बहुत दुश्वार होगा। राकेश ने मेरे साथ कोई बात नहीं की और चुपचाप मुझे लेकर घर के लिए रवाना हो गए। वो बहुत उदास थे, घर पहुंचकर मुझे समझाने लगे, तुम समझती क्यों नहीं निशी, आजकल लड़की की शादी करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मोटी रकम दरकार होती है इसके लिए, और फिर हमारी तो पहले ही एक बेटी है, उसी की शादी धूमधाम से हो जाए यही काफ़ी है। मैंने उन्हें साफ मना करते हुए कहा कि मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती और बच्ची को जन्म देकर ही रहूँगी। उस रोज़ तो हद ही कर दी उन्होंने, जब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो चीखने लगे, निकल जाओ मेरे घर से और मुझे कभी अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना। उनकी आवाज़ सुनकर घर के दूसरे अफराद भी हमारे कमरे में आ गए। मेरी सास ने मुझे समझाते हुए कहा, राकेश ठीक ही तो कह रहा है, क्या करोगी इन बेटियों का, कहाँ से लाओगी इतना पैसा उन्हें जहेज देने के लिए, इसलिए अब भी वक्त है, मान जाओ और अपनी जिद छोड़ दो। अपनी सास की ये बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने कहा, माँ जी आपको तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आप खुद एक औरत हैं, आपको भी तो किसी ने जन्म दिया था और फिर आपने खुद भी तो तीन तीन बेटियों को जन्म दिया है। गुस्ताख जबान चलाती है, शर्म नहीं आती तुझे, मेरे बेटे पर जरा भी तरस नहीं आता, उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर सीध करते हुए कहा। इसके साथ ही राकेश भी मुझे पीटने लगा। मैं उनकी खुशामद करती हुई अपनी बात पर अड़ी रही। फिर राकेश ने मुझे तलाक की धमकी देते हुए घर से निकल जाने को कहा। मैं फौरन उठी और इसी आलम में अपनी बेटी अंजलि को लेकर मायके के लिए चल दी। अपने मायके पहुंचकर मैंने घर वालों को सारी दास्तान सुनाई। मैंने अपने पिताजी से साफ कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को जन्म देकर ही रहूंगी। मेरे पिताजी ने मुझे हौसला देते हुए कहा था, हम तुम्हारे साथ हैं बेटी और इस पाप के काम के सख्त खिलाफ हैं। इस तरह वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन भी आ गया जब मैंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया। हमने उसका नाम मोना रखा। मोना नहायत ही खूबसूरत परियों जैसी थी।

0: मटोल चेहरा, झील जैसी नीली आंखें और गोरा चिटा रंग, वो मेरी अंजलि से कहीं खूबसूरत थी। बड़ी होने पर मोना को भी अंजलि वाले स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वो पढ़ाई में अंजलि से भी तेज निकली। दोनों बहनें अच्छे नंबरों से पास हो रही थीं। ये देखकर मैं खुशी से फूली नहीं समाती थी। अब अंजलि और मोना बड़ी होकर समझदार होने लगी थी, इसलिए वो अक्सर अपने डैडी के मुतालिक मुझसे पूछने लगती तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती, और जब उन्होंने मुझे ज़्यादा ही तंग करना शुरू कर दिया तो मैंने बहाना बना दिया कि वो काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क गए हुए हैं। लेकिन अंदर से मैं डरी हुई थी कि जूं जूं मेरी बेटियां बड़ी होती जाएंगी, ये मुझे अपने पिता के बारे में मज़ीद परेशान करेंगी, इसलिए मैं उलझन में रहने लगी। मेरे घर वाले मुझे हौसला देते। मैं रोज़ाना भगवान से प्रार्थना करते हुए राकेश की उम्र दराजी के लिए दुआ मांगते हुए कहती कि भगवान मेरे पति के दिल में मेरे और मेरी बेटियों के लिए प्यार डाल दे और वो हमें अपने घर ले जाएं। इस तरह देखते ही देखते 5 साल गुजर गए, और फिर एक रोज़ जैसे भगवान को मुझ पर तरस आ गया, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। उस रोज़ अचानक ही राकेश हमें लेने के लिए आ गए। आते ही उन्होंने मेरे पिताजी से माफ़ी मांगी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे चुप कराते हुए अपनी बेटियों के बारे में दरियाफ्त किया। मैंने उन्हें आवाज़ लगाई तो दोनों बहनें दौड़ती हुई आईं। अंजलि ने अपने पिताजी को पहचान लिया, इसलिए वो झट से उनके गले लग गई। मोना को मैंने कहा, देखो तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। मैंने कहा था ना कि वो विदेश गए हुए हैं नौकरी करने के लिए, अब वो वापस आ गए हैं हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कहते हुए मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे रोता देख राकेश से भी रहा ना गया और रोते हुए मुझसे कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो निशी, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, इतना बड़ा पापी हूँ कि शायद भगवान भी मुझे माफ़ ना करे। मैं बह गया था और समझने लगा था कि बेटियाँ कुछ नहीं होती, सब कुछ बेटा ही होता है, ख़ानदान का वारिस और ख़ानदान चलाने वाला, मगर मैं गलत था। लाला हरि प्रसाद के बेटों ने मेरी आँखें खोल दीं। माँ बाप ने उन्हें आला तालीम दिलाकर ऊंचे उहदों तक पहुँचाया, मगर बदले में उन्होंने अपने वालदैन को अनाथ आश्रम पहुँचा दिया। मुझे नहीं चाहिए ऐसे बेटे, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, इसलिए आओ अपने घर चलें। अंजलि और मोना हैरत से ये बातें सुन रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। मैंने उन्हें अब तक असलियत नहीं बताई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियों को कोई ठेस पहुंचे। मैंने अपने पिताजी से कहा कि वो हमें राकेश के साथ रवाना कर दें। उन्हें इस पर क्या एतराज़ हो सकता था, इसलिए पिताजी ने हमें खुशी खुशी रुख्सत कर दिया। अपने ससुराल आकर मुझे सभी से बहुत प्यार मिला। मोना को सभी टूटकर ऐसे प्यार कर रहे थे जैसे उन्हें खेलने के लिए कोई खिलौना मिल गया हो। मैं ससुराल वालों का ये रवैया देखकर बहुत खुश थी। अंजलि और मोना पढ़ाई में बहुत होशियार थीं और हर क्लास में मेरिट से पास हो रही थीं। मेरिट की बिना पर ही अंजलि को वकालत में और मोना को मेडिकल में दाखिला मिल गया। वक्त गुजरता गया। अंजलि वकालत करने के बाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग गई। मोना का कोर्स पूरा हो गया था और आज वो MBBS की डिग्री लेकर मोना से डॉक्टर मोना बनकर घर आ रही थी। मुझे इतनी खुशी थी कि बयान नहीं कर सकती। राकेश के पांव भी ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, उन्हें मोना पर बहुत नाज हो रहा था। मोना ने घर दाखिल होते ही अपने पिताजी के पांव छूते हुए कहा, डैडी आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी बदौलत हूँ, भगवान सबको आप जैसे डैडी दें। नहीं नहीं बेटी, मैं इस लायक नहीं, इस क्रेडिट की असली हकदार तो तुम्हारी माँ है। कहते हुए राकेश सोचने लगा कि अगर निशी अपनी ज़िद पर कायम ना रहती तो मोना का वजूद ही इस दुनिया में ना होता और मैं अपनी इस होनहार बेटी का कातिल बन जाता। ये सोचते हुए उनकी आंखों से नदामत के आंसू बहते रहे और उनके दिल को सुकून मिलता रहा। फिर वो अंजलि और मोना के कंधों पर हाथ रख कर कहने लगे, मेरी बेटियाँ किसी से कम नहीं। ये देखकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े।
1: हुणे तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम सबरंग दे विच अफसाना, नदामत के आंसू। अफसाना निगार से मुहम्मद अनवार आंसम। आ हुण समात फरमाइए चंद गज़लां।

जी हाँ बिल्कुल, मंजिल भी उन्होंने मिलती है जो हालातों अगे झुकते नहीं। हौसले की उड़ीक करो क्योंकि जिंदगी हर रोज़ एक नवा मौका दिंदी है। जो इंसान मुश्किलों के सामने डर जाता है वो कुछ नहीं कर पाता। सो मुश्किलों अगे डरन की बजाय डट के खड़े रहो। उन्हों अपनी कहानी नूं कामयाबी का नाम दो, ना कि अपने दर्द सुनाओ, क्योंकि अजकल दर्द नहीं सुनाए जाते और ना ही कोई सुन के राजी है। संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। लो जी, प्रोग्राम सलाम है जिंदगी दे विच इदां ही बने रहो। थोड़ी देर बाद असीं फिर मुड़ तो हाज़र होने हैं।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: दिल्ली के अंदर तुम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
3: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy, हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
4: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया

0: टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के आठों राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
4: This is the country.
5: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
2: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाओ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है। विचार चर्चा कार्यक्रम का आज का विषय भारतीय परंपरा में योग है। ये कार्यक्रम योग दिवस के संदर्भ में है, जो 21 जून को हर वर्ष आता है और पूरी दुनिया में इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस विषय पर चर्चा के लिए कि योग भारतीय परंपरा, भारतीय जीवन और परंपरा, ज्ञान से निकली हुई ये जो धारा है, इसका इतिहास क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इस विषय पर चर्चा के लिए आज प्रबुद्ध विद्वान और जो हमारे साथ जो चर्चा करेंगे उनमें मेरे साथ डॉक्टर सतीश कपूर, भूतपूर्व प्रिंसिपल लालपुर खालसा कॉलेज जालंधर, डीएवी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी रहे हैं और ब्रिटिश स्कॉलर रहे हैं। डॉक्टर कपूर, आपका स्वागत है। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं दूसरे विद्वान जो मेरे साथ हैं उनका भी परिचय श्रोताओं से कराना चाहूँगा। डॉक्टर हरीश कपूर, हरीश सूद निश्चिंत, श्री डॉक्टर हरीश सूद निश्चिंत, स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब डीएवी कॉलेज नकोदर के प्रिंसिपल रहे हैं, आप दोनों का एक बार पुनः स्वागत है। डॉक्टर साहब, 21 जून जब जब भी आती है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भारत एक बार फिर से गौरवान्वित हो उठता है जब से ये इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। संयोग से ये आज कार्यक्रम भी उसी समय आ रहा है, आज 19 तारीख है और 21 को हम योग दिवस मनाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये योग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से मनाया जाना, ये भारत की अब तक की जो भारतीय इतिहास की उपलब्धियों में एक बड़ी उपलब्धि रही है। तो इसके भी एक चरण हैं, जैसे शुरू में योग कहते हैं कि हमारे ऋग्वेद से शुरुआत हुई और फिर हमारे उपनिषदों से होते हुए पतंजलि योग तक आई, फिर योग दर्शन की बात गीता में भी हुई। तो विवेकानंद जी का भी एक दौर आया जब उन्होंने कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने इस ज्ञान को, जो भारत की जो ज्ञान धारा थी, उसको वहाँ तक लेके गए। और देर बाद जब ये इस बार जब यूएनओ में ये तय हुआ कि 21 जो जून है वो भारतीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो हर व्यक्ति के मन में ये उठता है, भारतीयों के मन में भी उठता है, नई पीढ़ी के मन में भी उठता है, योग तो सब कर रहे हैं, योग को एक कसरत के रूप में कर रहे हैं, प्राणायाम को एक, ये यहाँ तक भी बात हो गई कि ये शरीर को ठीक रखने के लिए है। लेकिन ये जिज्ञासा हमेशा रहती है कि भारतीय इतिहास में जो है, भारतीय जीवन परंपरा में जो है, योग के अगर इतिहास की जानकारी हम मांगते हैं तो ये अक्सर नेट पे जाके भी उतनी स्टीक नहीं लोगों को मिल पाती। तो मैं आपसे पहले डॉक्टर कपूर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि भारतीय जीवन परंपरा में योग के इतिहास की जो जानकारी है वो श्रोताओं से थोड़ा साझा करें।
1: देखिए, योग एक विज्ञान है, ये शरीर का भी विज्ञान है, मन का भी विज्ञान है और मन से परे जाने का विज्ञान भी है। योग एक कला है, ये कैसी कला है जो आपको जीवन कैसे जीना है इसका अनुभव भी करवाती है और इससे परिचित भी करवाती है। योग का इतिहास वैसे तो भगवान शिव को आदि योगी कहा गया है और कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही सबसे पहले ये ज्ञान जो है वो सप्तऋषियों को दिया। लेकिन जो प्राचीन साहित्य है उससे ये स्पष्ट है कि जो भारतीय ऋषि हैं उनकी अंतः प्रेरणा से ये योग की शुरुआत हुई। भगवान कृष्ण ने भी योग के संदर्भ में ये लिखा है गीता में और अर्जुन को कहा है कि ये ज्ञान सबसे पहले मैंने ये सूर्य विवस्वन जो है नाम से उनको दिया था। सूर्य से ये जो ज्ञान है ये फिर मनु को गया जी, और मनु से जो ज्ञान है ये इक्ष्वाकु को गया जी। इक्ष्वाकु से ये ज्ञान परंपरावश एक गुरु शिष्य से दूसरे गुरु शिष्य ऐसे ये चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे ये ज्ञान जो है ये लुप्त हो गया। जब आपने ऋग्वेद की बात की है तो ऋग्वेद में कोई 5 बार योग किसी और संदर्भ में कहा गया है,
0: योग शब्द का
1: जिक्र है। उपनिषदों में आप देखेंगे कि कोई 20 के करीब ऐसे उपनिषद हैं जिनको हम कहते ही योग उपनिषद हैं
0: जी,
1: जिनका संबंध डायरेक्टली योग से है। इसके अलावा जो दूसरे भी हमारे मुख्य उपनिषद हैं उनमें भी, बेशक वो छांदोग्य है या कठ उपनिषद है या दूसरे उपनिषद हैं, उनमें भी योग की चर्चा है। योग का अर्थ होता है, क्योंकि योग युज धातु से ये बना है, और जिसका अर्थ होता है जुड़ना। जुड़ना किसका? जुड़ना जीवात्मा का परमात्मा।

0: शब्द संस्कृत का शब्द है जी,
1: ये संस्कृत का शब्द है, युज धातु से ये निकला हुआ है। और जो व्यास परंपरा के लोग हैं, व्यास परंपरा, वेद व्यास जो है, उस उनके अनुसार उनकी जो इंटरप्रिटेशन है, योग का अर्थ आप समझ सकते हैं समाधि है सीधा। इसलिए जब आप पतंजलि योग सूत्र की भी बात करते हैं तो सबसे पहले समाधि पाद आता है। तो योग का इतिहास प्राचीन है। और योग, आपने पूछा कि क्यों ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि विज्ञान के दृष्टिकोण से, विज्ञान की कसौटी पर योग ये पूरा उतरा है,
0: खरा उतरा।
1: और इसी कारण योग जो है पूरे विश्व में प्रचलित है, और ऐसे प्रचलित है कि योग ना केवल लोग करते हैं लेकिन ये आजकल एक बिजनेस का भी अड्डा विशेष तौर पर वेस्ट में ये बना हुआ है।
0: भारत में भी रोजगार मिला है वैसे इस दृष्टि से,
1: भारत में भी रोजगार मिला है, लेकिन
0: ट्रेंड योगी आए हैं जिन्होंने,
1: विदेश में जो योग स्टूडियोज हैं वो बहुत हैविली चार्ज करते हैं, और उनकी जो योग की अंडरस्टैंडिंग है वो भी पूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने योग को आसन तक सीमित कर दिया है
0: जी।
1: और योग को आसन तक सीमित करने का अर्थ है कि जो जो इनके दूसरे प्रिंसिपल्स हैं, यम और नियम, क्योंकि आपने पतंजलि का कभी जिक्र किया, पतंजलि ने इसको सिस्टमेटाइज किया, इसको एक ऐसा रूप दिया जैसे आप कह सकते हैं कि एक सिस्टेमिक फॉर्म में पतंजलि इसको लेकर आए,
0: अष्टांग योग,
1: जब उन्होंने अष्टांग योग, योग के आठ अंग उन्होंने बताए, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो पश्चिम का योग जो है वो तो ज़्यादा इसी चीज़ पे आधारित है, जो तीसरा अंग है योग का, आसन। और एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि पतंजलि योग सूत्र में आसन के ऊपर केवल तीन सूत्र हैं, बाकी जो सब सूत्र हैं वो अंतरंग योग के साथ संबंधित है, क्योंकि योग बहिरंग भी है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और जो धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग योग है, ज़्यादा जिक्र जो है ये वो कम करते हैं, या अगर वो करते हैं तो उसमें भी हठ योग जो है वो ज़्यादा उनकी टीचिंग्स का हिस्सा है।
0: डॉक्टर साहब, जब हम लोग योग के बारे में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो जहाँ तक भी आम आदमी पहुँच पाता है तो बात यहाँ से शुरू होती है कि वो ये तप और ध्यान से शुरुआत होती है और फिर इसका विकास आगे आगे आगे होता गया। तो जब हम, जैसे अभी आपने भी बताया कि वेस्ट में जो है वो आसनों तक सीमित योग है, तो
1: नहीं, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा। ऋग्वैदिक काल में या बाकी वेदों के का जो काल है उसमें योग को तपस्या के तौर पे लिया जाता था, यज्ञ योग, और योग जो है ये तपस्या के रूप में था। इसका वो सिस्टमेटिक फॉर्म आपको बाद में मिलता है जब आप पतंजलि योग सूत्र देखते हैं
0: जी, जी।
1: और फिर उसके बाद भी ये योग का इतिहास जाता है, क्योंकि जब हठ योग प्रदीपिका लिखी गई, जब घेरंड संहिता लिखी गई और दूसरे वर्क्स जो हैं वो लिखे गए, तो योग का विकास होता गया।
0: डॉक्टर साहब, ये तो विकास यात्रा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये विकास यात्रा है योग की, तो ऐसे में जैसे अभी ये तय हो गया कि जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि वेस्ट में आसनों तक सीमित है, हमारे यहाँ भी जो बहुत मतलब लोगों को सिर्फ शरीर से जुड़ी हुई वस्तु मतलब एक साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लोगों का रुझान भी बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम बहुत थोड़े में ये कहना चाहिए कि योग का जो भारतीय जीवन परंपरा में स्वरूप क्या है, वो थोड़ा श्रोताओं को थोड़ा बताएं कि ये स्वरूप, एक्चुअली योग स्वरूप क्या है।
2: योग के संदर्भ में महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है और उन्होंने योग के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। योग के आठ अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और नियमित योग के अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। और इसलिए कहते हैं कि योग का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना है, और यदि इस रूप में संतुलन स्थापित होगा तो केवल हमारे यहाँ पर एरोबिक्स के रूप में या केवल शरीर के अंगों को इधर उधर करने से ये योग नहीं होता, हमें एकाग्रता चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण ही योग है। जब हमारे अपने मन की वृत्तियां विविध मुखी हो

0: करके भटकने लगती हैं, जब हम उन वृत्तियों को नियंत्रित कर लेते हैं और उन्हें नियंत्रित करने के उपरांत एक निश्चित दिशा में अपने आप को लगा लेते हैं, तो ये वस्तुतः योग का प्राथमिक उपयोग है। और योग से तनाव दूर होता है, चिंता दूर होती है, अनेक प्रकार के जीवन शैली संबंधी रोगों से भी मुक्ति मिलती है। और इसीलिए यहाँ यदि भारतीय परिवेश में योग के माध्यम से लोग जुड़े हैं और विदेशों में भी लोग इसके साथ जुड़ने लगे हैं, इसका अभिप्राय यह है कि इसका उपयोग और इसका लाभ सबसे अधिक लोगों को इसलिए हो रहा है कि इसके कोई विपरीत प्रभाव नहीं होते, साइड इफेक्ट्स इसके नहीं होते। जैसे बाहरी दवाइयाँ हम लेते हैं, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स
1: साइड
0: होते
1: इफेक्ट्स
0: हैं,
1: होते
0: और योग को यदि हम सही रूप में करते हैं, जिस दिशा में जिस रूप में कहा जाता है उस रूप में यदि हम योग का पालन करते हैं, योग के नियमों का पालन करते हुए अपने आप को उसके साथ जोड़ते हैं, तब हमें उसका कोई विपरीत प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। और यही कारण है कि विदेशी लोग इस योग के साथ अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं और जुड़े हैं। और यदि आज 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो योग की महत्ता को यूनेस्को ने स्वीकार किया है, और इसी स्वीकारिता के कारण विश्व भर में एक निश्चित दिन पर योग किया जाता है। तो भारत का इसमें विशेष महत्व रहा है, क्योंकि भारत ने इस योग की परंपरा को आगे से आगे बढ़ाया है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि ये आपने पतंजलि योग सूत्र की बातें की, ये सारा बताया, अष्टांग मार्ग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि की बात की। जैसे मैंने भी शुरू में जिक्र किया कि ऋग्वेद में जो जितना मैंने पढ़ा उसमें से ही सामने आया कि ये तप और ध्यान से बात शुरू होके जीवन परंपरा का हिस्सा, जीवन दर्शन एक तरह से मैं कहूँगा कि जीवन जीने का जो मार्ग बताया गया। तो जब हम यहाँ पहुँचते हैं, पतंजलि योग सूत्र की बात करते हैं, तो आज जो व्यवहारिक रूप से जब योग पूरी दुनिया में हो रहा है, जैसे आपने भी जिक्र किया है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन मोस्टली ये कहा जाता है कि योग जो जब योग आपको करना है, तो एक बिल्कुल जो प्रशिक्षित योगी है उसकी देखरेख में, ध्यान में होना चाहिए। तो ये जब जब वो युग था, पतंजलि वाला युग था, तब भी क्या यही व्यवस्था थी जो आज है? कहीं
0: देखिए,
1: ऐसा
0: योग
1: इतिहास
0: का
1: में
0: अर्थ है
1: मिलता है?
0: जुड़ना, आत्म का परमात्मा के साथ मिलना, और आत्म का परमात्मा के साथ मिलने के लिए जितने प्रकार के भटकाव रास्ते में आ रहे हैं, उन भटकावों से अपने आप को नियंत्रित कर लेना, और तब उसके उपरांत उस परमात्मा तत्व के साथ अपने आप को जोड़ने की चेष्टा करना, ये अंतिम साधना है उसकी, योग की।
1: मूलतः योग जो है, योग एक जो आत्म और परमात्म के मिलन का एक
0: हंस,
1: मार्ग है बेसिकली, जो
0: यस,
1: एक एक साधन भी है ये, हम अगर इसे
0: बिल्कुल
1: ऐसे कहें।
0: बिल्कुल ठीक।
1: तो डॉक्टर कपूर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे धर्म और अध्यात्म, फिर समाधि, ये सारे शब्दों में ये हम यहाँ चलते हैं, तो योग को जीवन जीने के जो गतिशील दर्शन के रूप में स्थापित किया है,
0: ऐसे है
1: ये
0: कि
1: अक्सर मुझे जितनी मैंने पढ़ा इसको, तो कहते हैं कि
0: पतंजलि
1: गीता
0: योग
1: गीता
0: सूत्र
1: में
0: में,
1: आके जो है
0: हाँ,
1: वो इसको, मतलब जीवने के जो दर्शन है उसके रूप में, जब कृष्ण अर्जुन संवाद है, जो यानी कि वो मुक्ति तक ले जाता है।
0: गीता का जो योग है उसके जो पहले जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग है, उसके बाद जो दूसरे 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग है, और आखिर के जो 3 अध्याय हैं, जो 18 अध्याय हैं, वो ज्ञान योग है। जैसा प्रिंसिपल साहब ने भी अभी कहा कि योग ना तो एक्सरसाइज है और योग ना कोई एरोबिक्स है, क्योंकि आजकल योग की जो प्रैक्टिस करते हैं ये वो प्रैक्टिस केवल शरीर तक रह जाती है, वो मन को साधने का काम नहीं किया जाता है, आत्मा तक पहुंचने की तो बहुत दूर बात है। उसका मेन मुख्य कारण जो है वो ये है कि पतंजलि के योग सूत्र के जो पहले सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन नहीं किया जाता, उनको फॉलो नहीं किया जाता। जैसे पहला सिद्धांत है यम, पहला जो अंग है, तो यम जो है उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 उसके सिद्धांत हैं, 5 हिस्से उसके हैं यम के। और फिर आता है नियम, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। जब तक आप शारीरिक तौर पर

0: नहीं हो जाते, मानसिक तौर पर शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। उसके बाद ही आप आसन में जाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने एथिकल कॉन्डक्ट नहीं बनाया है तो आसन करने का अर्थ तो यही होगा कि आप केवल एक एक्सरसाइज कर रहे हैं,
1: व्यायाम
0: और
1: कर
0: जो
1: रहे हैं।
0: बढ़िया जिसका ज़्यादा शरीर जिसमें इलास्टिसिटी है वो लगेगा कि शायद ये बेटर बेहतर योगी है, लेकिन ऐसा नहीं है।
1: योग की
0: तो
1: तरफ सीमित
0: यम
1: नहीं है।
0: और नियम को फॉलो करना ये सबसे ज़रूरी है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो सिद्धांत है ये मूल रूप से हर योग साधक को अपनाने चाहिए। और आसन के बाद मन को नियंत्रित करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि, क्योंकि प्राण भी दो तरह का है, एक कॉस्मिक प्राण है जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है, पूरी कायनात में व्याप्त है, और एक वो प्राण है जो आपके शरीर को गति दे रहा है, यानी कि आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, पूरक है
1: डॉक्टर
0: उसमें।
1: साहब, ये उसी कांश है, उसी जो ब्रह्मांड में जो आप
0: बिल्कुल,
1: कहते, उसी कांश
0: वो जो
1: मानव में है।
0: कॉस्मिक प्राण है जिसे महाप्राण की संज्ञा जो शैव सूत्र हैं उनमें दी गई है, वो जो महाप्राण है उसी महाप्राण का एक हिस्सा वो ब्रेथ है। बॉडी में प्राण के भी कई पार्ट्स हैं, प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है, समान है, ये पांच मुख्य प्राण है। और उसके बाद फिर नाग, कूर्म, क्रिकल, धनंजय, ऐसे ये पांच उप प्राण हैं। इनमें आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है वो बहती है। तो प्राणों का नियंत्रण अगर हो सकता है तो तभी हो सकता है जब आप ब्रेथ कंट्रोल करें, अगर आप अपनी सांस पे नियंत्रण कर सकें। इसलिए प्राणायाम, प्राणों का आयाम यानी कि प्राणों का नियंत्रण, प्राणों का कंट्रोल।
1: आपका तात्पर्य यह है कि जो योग जो है, जहाँ आप जब आपने इसको साधना, सांसों को साधना है जो है, वो एक्चुअली जो प्राणायाम का मूल आधार है।
0: क्योंकि सांस आती है तो आप हैं, सांस नहीं
1: जब
0: आती तो आप नहीं हैं। तो लेकिन ये इसके कई अंग हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो पंच प्राण हैं और पंच जो उप प्राण हैं। लेकिन अकेला प्राणों तक सीमित रहने की बात नहीं है, उससे आगे बढ़ने की बात है। प्राण आपके वश में हैं, होंगे, अगर इंद्रियां आपकी वश में हैं। इसलिए योग का जो अगला अंग है वो है प्रत्याहार। उसमें आप अपनी इंद्रियों को विदड्रॉ करते हैं उन चीज़ों से। आपकी आंखें खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ देखना चाहती हैं, आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ ग्रहण करना चाहते हैं, आपके कान हर तरह की अच्छी बुरी चीज़ को सुनना चाहते हैं। सो इंद्रियों का जो नियंत्रण है, अभी क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये योग का अंग जो है वो प्राणायाम के बाद ही सिद्ध हो सकता है। क्योंकि प्राणायाम से मन की साधना हो सकती है, लेकिन इंद्रियों की साधना के लिए आपको प्रत्याहार का जो प्रिंसिपल है उसको फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये बहिरंग योग है। और फिर आप अंतरंग की तरफ जाते हैं जिसकी चर्चा प्रिंसिपल साहब ने अभी की है,
1: जी
0: उसमें धारणा, ध्यान और समाधि है। आप किसी चीज़ को धारण करते हैं और फिर उस पर ध्यान करते हैं, फोकस करते हैं, और फिर आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उस सर्वोच्च सत्ता का हिस्सा बन जाते हैं जिस सत्ता से आपका उद्गम हुआ है।
1: और सर, ये फिर जैसे जैसे ये परंपरा आगे बढ़ी है उपनिषदों के जरिए, फिर गीता के ज्ञान, गीता की हम बात कर
0: हाँ
1: रहे थे कि गीता में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन के साथ जो संवाद हुआ है, उसमें फिर निकल के जो आगे बात चली है कि ये मोक्ष तक ले जाता है योग जो है, जिसमें उन्होंने मानव कर्तव्यों की बात की है, उद्देश्य और आध्यात्मिक उन्नति की जो बात की है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हम, क्योंकि भगवान कृष्ण को भी एक मतलब योगी के रूप में,
0: योगी राजकृष्ण
1: योगी
0: कहा
1: राज
0: जाता
1: कृष्ण कहते हैं, तो गीता में जो कृष्ण जो जिन्हें जो जिस अर्जुन के साथ संवाद में जिस योग के बारे में बताया है, उस योग को आप एक सरल दृष्टि से जो एक आम श्रोता समझ
0: है।
1: सके।
0: बहुत सहज शब्दों में बात करें इसके बारे में, कर्म योग है। कर्म योग में क्या है, निस्वार्थ भाव से कर्म करना,
1: निष्काम
0: निष्काम निस्वार्थ भाव से कर्म करना। उनका कर्म अपना करो और उसके फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो,
1: और उसमें
0: कृष्ण
1: फिर
0: यही कहा
1: कर्म
0: था।
1: फल समर्पण
0: और कर्म

0: इतने अच्छे
1: के
0: कर्म
1: प्रति
0: हैं,
1: आसक्ति के साथ यदि हम कर्म
0: समर्पित कर
1: करेंगे।
0: दो। तो योग, इसको योग की प्रकाष्ठा बोल सकते हैं कि योग
2: बिल्कुल
1: नहीं,
0: जहां
1: अभी
0: जाके
1: इसके आगे है। कर्म फल के प्रति आसक्ति के साथ यदि आप कर्म करते हैं तो इसमें आपका कर्म बाधित होता है, क्योंकि आपका ध्यान कर्म पर कम रह करके कर्म के फल के प्रति अधिक ध्यान है आपका,
0: ध्यान केंद्रित नहीं आपका।
1: ध्यान कर्म पर न रह करके फल के ऊपर ध्यान रहेगा तो वो कर्म फल नहीं मिलेगा, कर्मयोग नहीं है वो। कर्म फल के प्रति अनासक्त रह करके कर्म करना, ये कर्मयोग है।
2: कर्मण्येव
1: निष्कर्ष निस्वार्थ भाव से कर्म करना।
0: जी जी,
1: उसने क्या है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगस्तु अकर्मणि। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, अकर्मण्य रहने में नहीं है। और कर्म फल के प्रति अधीन मत बनो, और कर्म न करके भी काम नहीं चलेगा।
0: जी,
1: अगर तुम कर्म से बचकर के समझो कि आप अपना काम चला लोगे, नहीं चलेगा। तो ये कर्म योग है उनका, कर्म के माध्यम से फल की सिद्धि, कर्म के माध्यम निस्वार्थ भाव से कर्म करना। और निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो जो फल मिलना है वो परमात्मा पर छोड़ दो, वो उन्होंने देना। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन।
0: जी,
1: हर एक्शन का रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया होगी उसकी, और प्रतिक्रिया के रूप में आपको कुछ मिलेगा। अगर निस्वार्थ भाव से कर्म किया तो उसका उस रूप में फल भी मिलेगा। और कर्म फल के बाद, कर्म के कर्म योग के बाद कृष्ण ने ज्ञान योग की बात की।
0: जी,
1: ज्ञान के माध्यम से सत्य की प्राप्ति, ज्ञान योग में ज्ञान के माध्यम से सत्य की प्राप्ति। जब ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हैं, आपने सत्यम शिवम सुंदरम
0: तो
1: देखा है, सुना
0: सत्य
1: है,
0: से आपका साक्षात्कार हो जाता है फिर जब
1: ज्ञान
0: के ज्ञान
1: के
0: बल
1: से। क्योंकि ज्ञान में भी सत्य और शिव साथ निहित है। सत्य और शिव साथ होगा तो उसके साथ जुड़ा हुआ ज्ञान होगा तो लाभप्रद होगा। अगर ज्ञान में सत्य नहीं असत्य है, ज्ञान अगर अकल्याणकारी है, कल्याणकारी नहीं है,
0: तो वो फलित नहीं
1: तो उसका लाभ नहीं मिल सकता।
0: नहीं।
1: तो ज्ञान के माध्यम से सत्य की प्राप्ति करना।
0: शायद
1: और
0: इसी
1: इसके बाद अभी एक और है इसमें, भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भू माते संगस्तु कर्मणि। और उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मेरे प्रति तुम स्वयं को समर्पित कर दो, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। अर्जुन को जब कृष्ण कहते हैं
0: जी,
1: मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। और जब अर्जुन शोक की मुद्रा में था तो वो पाप से मुक्त करने के लिए कृष्ण ने उसे अपना दिव्य रूप दिखाया था। और दिव्य रूप दिखाने के लिए पहले उसने क्या किया था, उन्होंने कि उसकी आंखों में उसको वह ज्योति प्रदान की थी। सामान्य आंखों से वह उस रूप को नहीं दे सकते थे, तो अर्जुन को पहले दिव्य ज्योति प्रदान की, और दिव्य ज्योति के माध्यम से दिव्य चक्षु प्रदान करने के बाद उन्होंने अपना दिव्य रूप उसे दिखाया, ताकि अर्जुन के भीतर उसकी ग्राह्यता बन जाए, जो वो बात कह रहे हैं उसे ध्यान से सुन करके उसे स्वीकार कर सके।
0: जी, ये योग भी भगवान कृष्ण ने फिर उनको दिया कि उनको वो उस विराट स्वरूप में देख सकें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे मुझे लगता है कि जब इसी संबंध में जब कृष्ण को एक बार अर्जुन पूछते हैं कि धर्म क्या है, तो यही बात कहते हैं आपने जो बताया, कि वो कहते हैं कि जो निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म है वही वास्तव में धर्म है। तो गीता से आगे बढ़ते हुए जैसे ये हम फिर से वही जाएंगे कि जहाँ हमने ऋग्वेद से लेके उपनिषदों तक, पतंजलि तक, फिर गीता तक आए, तो आधुनिक युग में जब हम बात करते हैं, जब हालांकि ये जो ज्ञान है ये भारत ने दुनिया में पहले से पूरी दुनिया में
2: शैव परंपरा का इसमें बहुत योगदान है, क्योंकि भगवान शिव को आदि
0: वो तो आपने
2: योगी
0: वो तो डॉक्टर साहब ने वो तो आप ऋग्वेद से भी पहले की एक बड़े को लगता है कि मतलब बेसिकली जो है शिव योगी जो है वो परम योगी की बात करते हैं आप, तो शैव परंपरा के बारे में।
2: शैव परंपरा में जैसे पाशुपत हैं, कालमुख हैं, और इसके अलावा और बहुत से ऐसे सेक्ट्स जो हैं जिनमें से नाथ पंथ जो है उसका एक विशेष महत्व रहा है। मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ जी की परंपरा, हाँ, जितने भी ये रहे
0: नाथों की एक बड़ी परंपरा रही,
2: और गहनीनाथ और भर्तृहरि, ये सभी जितने भी योगी हैं इन्होंने शरीर तौर पर, शारीरिक तौर पर साधना करके

0: मन के ऊपर विजय प्राप्त की और फिर मन के ऊपर उठ गए। और आप हैरान होंगे कि इसमें कश्मीर शैविज्म को का भी बहुत ज़्यादा योगदान है।
1: कश्मीरी शैविज्म
2: डॉक्टर साहब, इससे आगे बढ़ेंगे, आपने ये बहुत अच्छा हमें ज्ञान दिया है कि ये नहीं तो ऋग्वेद तक बात ही नहीं, तो भगवान शिव से ये योग है आपने बताया है, ये हमारे श्रोताओं के लिए ज्ञान की नई बात है। आधुनिक युग में जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमेशा भारतीय संस्कृति ने दुनिया को दिया है, तो आधुनिक युग में जब योग को दुनिया के अंदर दोबारा से जो हम प्रसारित कहेंगे, प्रचारित नहीं कहेंगे, प्रसारित ही कहेंगे, ये इतिहास में ये आता है कि स्वामी विवेकानंद जब
0: स्वामी विवेकानंद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजयोग के ऊपर बात की थी, और राजयोग वही योग है, ये राजयोग वो नहीं है जो आजकल कुछ सेक्ट्स और कुछ परंपराओं में चल रहा है,
2: ये मन पर
0: ये राजयोग जो है ये पतंजलि का अष्टांग योग है, और इसी राजयोग पे उनकी पुस्तक इंग्लैंड में छपी थी शायद 1895 या 6 में प्रिंट हो गई थी वो किताब, उससे योग की शुरुआत जो है वो हुई। स्वामी विवेकानंद ने हठ योग का प्रचार नहीं किया, लेकिन उन्होंने हठ योग के कुछ मूलभूत सिद्धांत जो थे, जिनमें विशेष तौर पर प्राणायाम था, इसका आश्रय उन्होंने ज़रूर लिया, और इस पर उनके बहुत से लेक्चर्स जो हैं वो अमेरिका में हैं और वो रिकॉर्डेड हैं। स्वामी अभेदानंद जो उनके ही गुरु भाई थे वो भी वहाँ पे गए, और उसके बाद आप देखिए कि रमन महर्षि हैं, स्वामी प्रभुपाद हैं जिन्होंने भक्ति योग का सिद्धांत जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, और फिर आजकल के समय में BKS अय्यंगर है, और उसके पहले कृष्णा स्वामी अय्यर थे, और उनके बाद तो देसिकाचार और अन्य लोग जो हैं उन्होंने विदेशों में योग का जो है वो प्रचार प्रसार किया।
2: तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी दोबारा से जो है मतलब वैश्विक परिदृश्य पर जो स्थापित योग को दोबारा किया, जो शिकागो भाषण में जब उन्होंने बातें की ये सारी किताब आने से पहले, उसमें भी उन्होंने रखा ये विषय, तो ये कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो हैं वो आधुनिक युग में जो हैं वो अग्रदूत रहे हैं इस विधा को
0: योग
2: वहां तक ले जाने में,
0: का ज्ञान प्रसारित करने में उनका बहुत योगदान है। और स्वामी विवेकानंद के बाद स्वामी योगानंद जो थे उनका बहुत योगदान था, जिनका योगोदय सत्संग आजकल भी
2: लहरी बाबा के दो शिष्य थे।
0: लेकिन हठ योग के विषय में BKS अय्यंगर का योग
2: डॉक्टर साहब बहुत इसी ज्ञान इतने विशाल ज्ञान है ये, लेकिन
0: बिहार
2: अपने अपने कार्यक्रम की जो समय सीमा है वो समापन हो रही है। आप सब आप दोनों का यहाँ, क्योंकि आपके आने से मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं का इस विषय पर बहुत बड़ा ज्ञान उसका उन्हें ज्ञान नया मिला है, तो मैं ये भी हम आकांक्षा करेंगे सभी लोग की इस विधा से जो भारत का जो ज्ञान है योग खास तौर पर, जिसको बेसिकली जीवन जीने का जो योग है, उससे पूरी दुनिया अब फायदा ले रही है और लेगी।
0: भगवत गीता में कहा है स्मत्वम योग उच्यते, इक्विलिब्रियम जो है।
2: समय सीमा समाप्त हो रही है, तो दिल तो करता है कि ये ज्ञान की बातें आपसे हमें सुनते ही जाए और श्रोता भी सुनते जाए, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि श्रोता जो हैं वो आपके इस ज्ञान के माध्यम से जो है योग के अन्य पक्षों को भी जो है सिर्फ कसरत तक नहीं उसको भी जानेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
3: मीडिया वेव 343 शहर 6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज, DRM 864 किलो हर्ट्ज, FM बैंड 100.8 मेगा हर्ट्ज, FM बैंड 100.9 मेगा हर्ट्ज से DTHD आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ये जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो की कड़ी ते 10 बज रहे ने, ते हुणी थोड़ी देर तुसी सुनोगे मुख खबरां।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विच पीएम विकसित भारत रोजगार योजना तहत 2400 करोड़ रुपए की राशि वंडी पंजाब विच। ए प्रोग्राम 6 थावां ते करवाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले सालों विच भारत के नौजवान विश्वव्यापी विकास नवीनता अते उत्तमता नूं वधाउण विच सब तो अगे होणगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास प्रकट किया कि भारत 2047

दोस्तों, एक बड़ी कमाल दी गल है। सानू ये तो पता है कि टाइम इक्को जिहा नहीं रहिंदा, टाइम बदलता रहिंदा। सो सानू टाइम नू गवाना नहीं चाहिए, टाइम दे विच रह के आनंद माणनियां चाहीदियां, छोटियां छोटियां चीज़ां, छोटियां छोटियां यादां बनानियां चाहीदियां। प्रोग्राम सरगम चलता क्योंकि नाम ही इन्ना सोहना प्रोग्राम का जिहड़ा सुरन नाल तालमेल खांदा है। और सब तो वड्डी गल है जे आपां इहनू रिलेट करिए जिंदगी दे नाल, जिंदगी भी तो एक सरगम वांगू ही है। कदे उच्चा सुर आउंदा है, कदे नीवे लगदे ने सुर, कदे खुशी दी धुन वजदी है ते कदे चुनौतियां दी। पर जिवें हर सुर मिल के एक सुंदर धुन बणाउंदा है, उसे तरह जिंदगी दे हर तजर्बे नाल साडी जिंदगी, साडी कहानी खूबसूरत हुंदी है। मुश्किलां जिंदगी दा शोर हन, पर हौसला उसकी सब तो मिठी सरगम है। सो समा जिदा दा मर्जी आवे, साडी सोच, साडी अप्रोच हमेशा साफ होनी चाहिए है। जिदा दा मर्जी सिचुएशन आवे, सानू अपनी सोच नू सकारात्मक तरीके नाल लेना चाहिए। सो इस दे नाल ही प्रोग्राम दा अगला गीत थोड़े सामने पेश है, आनंद माणो जिस गीता।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर

0: अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्ण ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्ण ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, MyIRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This disbursal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੁਗਾਤ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ 'ਤੇ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਅੱਜ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਨਕ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ,
1: ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
0: ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ?
1: ਸਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਲਿਆ
0: ਜੀ,
1: ਮੈਨੇ ਉਸਕਾ ਦਾਮਨ ਥਾਮ ਲਿਆ।
0: ਅਰੇ ਵਾਹ,
1: ਜਬ ਜਬ ਦਿਲ ਪੇ ਦਰਦ ਹੁਆ
0: ਜੀ,
1: ਅਮਿਤ ਸਰ ਮੈਂ ਤੋ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਲੀਕਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ
0: ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ
1: ਮੱਲੀਵਾਲ ਸਾਕੋਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾ ਮੈਂ। अभी मैं इधर सर जॉब कर रहा हूँ, जो सच्चाई मैं सच बोलता हूँ सर।
0: संतोष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ये खुशी हुआ देखकर कि आप पंजाबी गीत लाइक करते हैं और बोल नहीं पाते लेकिन फिर भी इंजॉय करते हैं, सुन सकते हैं, इंजॉय करते हैं।
1: सर मैं है ना, मैं जितना भी प्रोग्राम आता, मैं दिन में भी मैं जो है अपना चंडीगढ़ का आता है, जम्मू का आता, मैं सारे प्रोग्राम में मैं कॉल करता हूँ सर।
0: वाह जी वाह, बहुत खुशी की बात है।
1: मैं ये चीज है ना, जो कोई इंसान बोलता है ना जो पंजाबी, इतना समझ नहीं लगता है। मैं ये चीज है ना, पंजाबी बिल्कुल अच्छा है, पंजाब का आदमी अच्छा है, ये चीज का। मैं ना, मैं किसी प्रोग्राम में मैं कॉल करता हूँ, मैं ना पंजाबी में बात करता हूँ, हाँ जी मैं ना, मैं आपसे हिंदी में नहीं, मैं इधर आपसे बात करता हूँ।
0: संतोष जी आपका आवाज कट रहा है, जल्दी से बताइए कौन सा गीत सुन। हेलो,
1: मुझे है ना गीत सुना दीजिए, सिली सिली है हवा, कोई किसी कोई रोंदा होगा, हंसराज हंस।
0: जी जी जी, बिल्कुल ठीक है जी, आपने बहुत प्यारा गीत चूज किया है। संतोष जी हेलो, लगता है कॉल कट गई, लेकिन संतोष जी हमने आपका जो चॉइस है वो गीत पूछ लिया है, तो हम आपको प्ले कर रहे हैं आपकी पसंद का गीत, हंसराज हंस की आवाज़ों में आपके पास पहुंच रहा है जी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुसी भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हो, प्रोग्राम शुरुआत में हिस्सा लेना चाहते हो, सानू फटाफट कॉल करो जी। साड़ा नंबर है 0181 43 171, और वट्सएप मैसेज वास्ते 94655 36070। आओ फिर संतोष जी की पसंद का गीत हंसराज हंस नवाज इंजॉय करते हैं।

लगदा ते डोरी हो जानी है सवाद ते बहाने होर लानिए गल नाल लग नी गल नाल लग गल नाल लग गल मुक जान सारिया।

0: हेलो।
1: हेलो, मैं
0: हाँ जी, कौन बोल रहे ने? किस जगह तो बोल रहे ने?
1: मोहन चंद्र बोल रहा जी, डेनवर।
0: वाह जी वाह, मोहन जी, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत तोड़े अपने प्रोग्राम सुगात विच। की हाल चाल ने?
1: हाँ सर, ठीक है जी। टाइम
0: ते साडा प्रोग्राम इस वेले उसे दसो टाइम की होया?
1: जी 1:05।
0: अच्छा, ते तुसी फिर ट्रैवल कर रहे हो कि काम ते ही हो?
1: मैं घर जा रहा सीगा।
0: कर जा रहे सी ते कार च, मतलब सुन गड्डी सुना प्रोग्राम सुन रहे हो?
1: गड्डी लगा के रेडियो गुरनाम
0: चलो ठीक है, आज केड़ा की सुनना चाहोगे?
1: पुर सुना दो।
0: ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सानू बड़ा चंगा लगता जी, साढ़े जदों पंजाबी दोस्त, साढ़े भरा, साढ़े मित्र इन्नी दूर जा के भी अपनी माँ बोली नू, अपने देश की मिट्टी नू याद रखते ने और सानू पंजाबी गीत सुनाने लिए कहते हैं, तो बहुत चंगा लगता है। और इन्हों की पसंद का गीत गुरनाम भुल्लर की आवाज़ असी सारे इंजॉय करते हैं। प्रोग्राम चल रहा जी सुगात, अगर तुम भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हो सानू कॉल करो 0181 2342 171 और वट्सएप ली 94 655 3607।

अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। एक कथन शब्द दी महिमा प्रगट करता है। तुर्की बाणी जो गुरु साहबान संता महापुरशा पक्ता पट्टा सिखा अते होरना महापुरशा दी रसना तो उचारी गई, वो अमृतमई है, जिसनु सर्वण करके इंसान परम गति प्राप्त कर सकता है। तांते फिर ऐसे अकाल पुरख तो वारने जाना चाहिदा है, जिसते अमृतमई बोल असी सर्वण करते हाँ ते मन विच वसाउंदे हाँ, मन आनंदित हुंदा है। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। सरवण करदे आ भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

कोल कुमाई लालना गुरमन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। इस शब्द का गायन कीता सी भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। उस परमात्मा नाल अथा प्रीत रखण वाले गुरमुख जना नू उस इलाही सद दितांग हुंदी है। जे कोई गुरु का प्यारा गुरु के बचना नू अलाउंदा है तो फिर बड़े प्यार नाल उस सच्ची सद नू गुरु के प्यारे सरवण करदे ने। सद तो भाव बचन हन, आवाज है। तेरा सदड़ा सुनी जै पाई जी को बह अलाए। सरवण करदे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उन्हां दे जत्थे वालों गायन कीता होया ये शब्द।

तेरा सदड़ा सुनी जय पाई, जे को बह अलाए। आप जी सरवण कर रहे सो डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उन्हां दे जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: ये मत पापां के संग ओ तो पै नावें के रंग। सतगुरु जी कहिंदे मैनू ना जोग चाहीदा, ना भोग, ना तपिया अते ना ही तीर्थ इशनान दी अभिलाषा है। फिर की करना है? तेरा सदड़ा सुणीजै भाई जे को बहै अलाए। हे परमात्मा, मैनू तां केवल तेरी सिफत सलाह दा शब्द ही चाहिदा है। मैं केवल उही सुनना चाहुंदा हाँ अगर कोई प्यार विच भिज के मैनू सुनाए। जैसा बीजै सो लुणै, जो खट्टै सो खाए। अगै पुछ ना होवे जे सण निशाणै जाए। इस जगत अंदर मनुख जो कर्म करदा है उस अनुसार ही फल दी प्राप्ति हुंदी है। शरीर कर्म भूमि है, कर्मां दा बीज बीजिया जांदा है, फल भी उसे तरह दा प्राप्त हुंदा है। फिर जो बीजदा है आप नूं ही वढ़ना पैंदा है। कोई भैण भरा रिश्तेदार धियां पुत्तर हिस्सेदार नहीं बणदे, आपे बीज आपे ही खा। जो कमाई कीती है उही खाणी पैंदी है। कर्म चंगा कीता है फल कई गुणा वध चंगा मिलेगा, पर जे बीज माड़ा बीजिया गया है ता फल भी कई गुणा वध माड़ा होवेगा। साहिब कहिंदे जोग भोग तप विच परमात्मा दी सिफत सलाह दी कमाई नहीं है, पर परमात्मा दी हजूरी विच सिफत सलाह ही परवान है। जिहड़ा मनुख परमात्मा दी सिफत सलाह दा निशान भाव राहदारी परवाना नाल लै के चलदा है उस नूं रस्ते विच अग्गे कोई भी रोक टोक नहीं पै सकदी। तै सो जैसा कांडिए जैसी कार कमाए। जो दम चित ना आवे सो दम बिरथा जाए। साहिब कहिंदे ने कि मनुख जिस तरह दी कार करदा है ना उस तरह ही जाणिया जांदा है। जिवें सोने दे गहने बनाउण वाला सुनियार, लोहे दा कम करन वाला लोहार, मिट्टी दे भांडे बनाउण वाला कुम्हार, इसी तरह ही आत्मक जीवन दे पंध विच वी उही नियम कम करदा है जो उस परमात्मा दी भगती करदा है। भगत उसे नूं ही आख्या जांदा है। जोग भोग जां तप विच्चों भगती भाव पैदा नहीं हो सकदा। मनुख दा जिहड़ा सुआस किसे ऐसे उद्यम विच लंघदा है कि परमात्मा उस दे मन विच नहीं वसदा तां ओह सुआस व्यर्थ चला जांदा है। ए तन वेची बै करी जे को लए विकाए। नानक कम ना आवे जित तन नाहीं सच्चा नाओ। गुरु नानक देव महाराज जी बख्शिश कर रहे हन जिस मनुखा शरीर विच परमात्मा दा सदा थिर रहण वाला नाम नहीं वसदा ओह शरीर किसे कम नहीं आउंदा। ओह शरीर व्यर्थ ही गया समझो। इस वास्ते जे कोई मनुख मैनू प्रभु दे नाम दे वटे मेरा शरीर लैणा चाहे ते मैं अपना शरीर भी वेचण नूं तैयार हाँ। मैं अपना शरीर भी बहि करन नूं तैयार हाँ, पर नाम दी दात झोली विच पै जाए।
1: तेरा सदड़ा सुनी जय पाई जे को बहै अलाए। आप जी सरवण कर रहे सो इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार सन ज्ञानी जसविंदर सिंह दर्दी। तुर दरगाहों आए प्रभु दे मिठड़े बोल अणियाले तीरां दी तरह असर करदे ने। ए इलाही बोल उसे अकाल पुरख दे ने जो घट घट की जानण वाला है। तन हन ओ गुरु के प्यारे जो सानू प्रभु दियां बातां सरवण करवाउंदे ने। मेरा मन प्रेम लगो हर तीर हमरी बेदन हर प्रभ जाने मेरे मन अंतर की पीर। सरवण करदे हां बीबी आशुप्रीत कौर ते उन्हां दे जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर। इस शब्द दा गायन कीता सी बीबी आशुप्रीत कौर ते उन्हां दे जत्थे ने।

तारे ओ संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीरत वंत सदा सुख संपत रिद्धन सिद्ध न छोड़े साथ दान बड़ा अतवंत महाबल सेवक दास कहे हो तथ ताहे का।

0: बड़ाई।
1: मोह मल विवश कियो, काम गए केश पछाड़ियो, क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यों झाड़ियो, जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सुमन्ने, भव सागर बंध्यो सिख तारे सो परसन्ने, सिर आतपत सच्चो तख्त जोग भोग संयुत बल, गुरु रामदास सच छल पण तू अटल राज अपग दल, तू सतगुर चो जुगी आप आपे परमेश्वर, सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरै तुर, आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहलोह, अगम निगम उदरन जरा जमे आरोह, गुर अमरदास थिर थप्यो परगामी तारण तरण, अग अंतक बदे ना साल कावा, गुर रामदास